0: श्रोताओं, आइए सभा का शुभारंभ करते हैं आज के अनमोल विचार से।
1: पवित्र बाइबल में कहा गया है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि महान हृदय की पहचान है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की गलती को सही मान लें, बल्कि ये है कि हम अपने मन को क्रोध और कटुता के बोझ से दूर कर लें। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। आइए आज हम किसी एक शिकायत को छोड़कर अपने मन में क्षमा और प्रेम के लिए जगह बनाएं।
0: ये था आज का हमारा अनमोल विचार और प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रभाती वंदना। शुरुआत मातृ वंदना से।

मातृ वंदना के बाद प्रभाती वंदना की अगली प्रस्तुति एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में, आरती साईनाथ शिरडी वाले की।

पाएगा, दीदार हक जमाल नबी का वो पाएगा, दोजक की आग से उसे रोजा बचाएगा, रहमत उसे नवाजे।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस नात के साथ ही समाप्त होता है प्रभाती वंदना कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है अग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें बछड़ों में निमोनिया के संदर्भ में तथा इसके उपचार व बचाव के तरीकों के बारे में। बछड़ों में निमोनिया या फेफड़ों का संक्रमण एक घातक बीमारी होती है। द्वीपों की गर्म व नम जलवायु श्वसन तंत्र की बीमारियों को आदर्श वातावरण उत्पन्न करती है और इस तरह के बीमारियों के लिए काफ़ी सहायक है। जब कभी शरीर पर अचानक तनाव पड़ता है, चाहे वो वातावरण में हुआ अचानक बदलाव हो, चाहे रखरखाव की कमी हो या वातावरण की गंदगी हो, निमोनिया की संभावना या आशंका सबसे ज़्यादा हो जाती है। निमोनिया के लक्षण क्या क्या हैं? किसान भाइयों, प्रभावित बछड़ों के नाक से पतला श्राव प्रारंभ में निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। बाद में ये जो

हल्का या पतला श्राव होता है, वो गाढ़ा हल्का पीला भी हो सकता है। इसे अक्सर किसान भाई नाक आना भी कहते हैं। कभी कभी आँख से भी थोड़ा बहुत श्राव आ सकता है। कुछ बच्चों में सूखी खांसी भी हो सकती है। ये ज़्यादा चलने फिरने आदि से बढ़ जाती है। इस तरह से जो प्रभावित बछड़े होते हैं उनको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तीव्र अवस्था में यानी बीमारी के आखिरी स्टेज में बुखार, सुस्ती, भूख की कमी, खांसी तथा सांस लेने में कठिनाई आदि कई सामान्य लक्षण उभर सकते हैं। बाद की अवस्था में बछड़ा बैठा ही रहता है तथा गर्दन एक तरफ मोड़कर सुस्त हो जाता है। अधिकांश बछड़ों में अतिसार भी पैदा हो सकते हैं। तो साथियों, इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपके बछड़ों को शायद निमोनिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जहां तक उपचार का सवाल है, उपचार का मुख्य उद्देश्य बाद में होने वाले जीवाणु संक्रमण को रोकना है। फेफड़ों में संक्रमण के कारण शरीर द्वारा जो प्रतिरोध होता है वो द्रव्य के रूप में

0: साथियों, इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपके बछड़ों को शायद निमोनिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जहां तक उपचार का सवाल है, उपचार का मुख्य उद्देश्य बाद में होने वाले जीवाणु संक्रमण को रोकना है। फेफड़ों में संक्रमण के कारण शरीर द्वारा जो प्रतिरोध होता है, वो द्रव्य के रूप में वायु थैलियों में या श्वास नलिकाओं में भर जाता है, जिसे सामान्य श्वसन के लिए हटाना आवश्यक होता है। इसलिए उपचार करते समय एक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक औषधि, प्रतिरोधन या सूजनरोधी कॉर्टिसन दवा तथा बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल लाभदायक पाया गया है। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार ब्रोंको डायलेटर औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। फेफड़ों की जगह पर छाती में तारपीन यूकेलिप्टस का तेल या फिर सरसों के तेल में कपूर डालकर गुनगुना किया हुआ जो तेल होता है, उसकी हल्की मालिश काफ़ी मददगार साबित होती है। ये रक्त संचार बढ़ाने तथा तुरंत आराम पहुंचाने के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, निमोनिया से अपने पशुओं को बचाने के लिए भी कुछ एक उपायों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुशाला में तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखें। गोबर, कूड़ा करकट आदि इन जगहों के आसपास जमा ना हो, अन्यथा ये सड़कर स्थिति को और खराब कर देंगे। नवजात पशुओं के वातावरण में बदलाव ना होने दें। यदि दिन में गर्मी तथा रात बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इन पशुओं को इस बदलाव से बचाएं। अच्छा होगा कि धूप में उन्हें बाहर ना छोड़कर पशुशाला या छाया में बांध दें तथा सुबह शाम उन्हें बाहर छोड़ें। बछड़ों को खीस नियमानुसार ज़रूर पिलाएं। ये देखा गया है कि यदि बछड़ों को 2.5-3 माह तक दूध पिलाया जाए, तो बीमारी बछड़ों में कम होती है। किसान भाइयों, निमोनिया एक गंभीर बीमारी है तथा इसके उपचार के लिए आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। आप द्वारा कुछ घंटों की देरी पशुओं की मृत्यु का कारण भी बन सकती है।
1: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अग्री टिप्स।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों

0: के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India.

वापसी उसी रोज रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए एमवी सेंटिनल की यात्रा होगी। श्रीविजयपुरम से 20 सितंबर को सवेरे 7 बजे और वापसी होगी। इस जलयान की श्रीविजयपुरम के लिए अगले दिन 21 सितंबर को शाम 4 बजे जलयान कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। जलयान नालंदा 22 सितंबर को सवेरे 9 बजे ननकौरी होते हुए कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान श्रीविजयपुरम से चलेगा और 24 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैमल बे से प्रस्थान कर ननकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। इन स्थानों के लिए इस जलयान की अगली यात्रा होगी 29 सितंबर को सवेरे 9 बजे। एमबी कालीघाट 24 सितंबर को सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से ननकौरी कड़चाल तेरेसा चौरा कार निकोबार और लिटिल अंडमान होते हुए कैमल बे की यात्रा करेगा और 27 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैमल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्रीविजयपुरम की वापसी करेगा। और अब सुनिए आज होने वाले यात्राओं की सूचना। एमबी बम्बुका आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए इसकी वापसी यात्रा होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमबी कालीघाट आज दिन के 11:30 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा करेगा और आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा। और शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी होगी आज ही शाम 3:30 बजे। एमबी कमोटा आज शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और अगले दिन यानी कल 18 सितंबर को सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा।

0: और अब कल होने वाली कुछ यात्राएं। एमबी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा करेगा और कल ही दोपहर बाद 12 बजे रंगत से यात्रा कर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमबी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। और एमबी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा करेगा, जलयान श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी रवानगी होगी। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। सुनते हैं इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सुनीता आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन का हर दिन का हिस्सा है। जी हाँ, मौसम। दोस्तों, मौसम का मिजाज बदलता रहता है, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। हर मौसम की अपनी खुशबू, अपना रंग और अपनी कहानी होती है। मौसम बदलते रहे, दिन बदलते रहे, मगर दिलों में प्यार का मौसम हमेशा बना रहे।

दोस्तों, मौसम बदलता है और उसके साथ जिंदगी के रंग भी बदलते हैं। बदलता मौसम हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेरे मन का मौसम कुछ यूं बदलने लगा है, तेरा ख्याल आते ही चेहरा मेरा खिलने

दोस्तों, मौसम की तरह जिंदगी भी बदलती रहती है, इसलिए हर पल को खुशी से जीना चाहिए। मौसम चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराने की वजह हमेशा खोजी जा सकती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, दिल में किसी की मीठी सी पहचान है।

0: तो दोस्तों, इस सुहाने मौसम की खूबसूरत यादों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप मौसम शीर्षक पर केंद्रित हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान की 364वीं कड़ी।

श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य की महिमा का बखान करते हुए लवकुश के जन्म तथा उनके पराक्रम का उल्लेख किया है। भारतीय जीवन में राम राज्य प्रजा के सुख शांति तथा नियम संयम के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। श्री राम के राज्य में चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता होती है तथा मेघ मांगने से जब जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। भगवान शिव जग जननी उमा को राम राज्य की महिमा बताते हुए कहते हैं, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित हैं। श्री राम सभी भाइयों पर प्रेम की वर्षा करते हुए उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान की 364वीं कड़ी सुन रहे थे। स्वर दिया था सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदेरी ने और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:40 हुए हैं। सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

0: ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:50 हुए हैं। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों में भारी वर्षा और एक दो स्थानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं मछुआरों को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को 20 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों में भारी वर्षा और कुछ स्थानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये था आज का मौसम का मिजाज।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थितान् जनान् अपि सम्बोधयिष्यति। त्रिदिवसीयस्य सम्मेलनस्य प्रदर्शन्याः च आयोजनं सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम इत्यस्मिन् विषये भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने अर्धचालक विद्युत प्रौद्योगिकी मूल्यश्रृंखलया सम्बद्धाः वैश्विकाः भारतीयाश्च उद्योगाः नीतिनिर्मातारः निवेशकाः अनुसन्धानकर्तारः नवोद्यमाः शैक्षणिकसंस्थाः छात्राश्च एकत्रिताः भविष्यन्ति। उद्घाटनात् पूर्वं प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुखैः वैश्विकमुख्यकार्यपालकैः

0: अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः एकाधिक द्विसहस्र तमस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनांके शपथ ग्रहणस्य पञ्चविंशति वर्ष पूर्तिरपि स्मरिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिवसः अद्य सेवादिवस रूपेण आचरिष्यते तथा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रक्तदान शिबिराणि आयोजयिष्यन्ते। अद्य सायंकाले आशीर्वाद का दिया इति कार्यक्रममपि आयोजयिष्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे परिवाराः प्रधानमन्त्रिणः पञ्चविंशति वर्षीय जनसेवायै कृतज्ञतां प्रकटयन्तः दीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। अद्य प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनायाः त्रिवर्षाः पूरिताः। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 30 लक्ष लाभार्थिनां पञ्जीकरणेन महत्वपूर्णं सोपानम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 23-2000 वर्षे अस्याः योजनायाः शुभारम्भः कृतः आसीत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् 18 निर्दिष्टेषु पारंपरिक व्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविधसहायतां प्रदातुम् अस्ति। तमिलनाडुराज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः विधानसभानिर्वाचनक्षेत्रयोः आयोक्ष्यमाणेभ्यः उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य नामाङ्कनपत्रप्रस्तुतेः अन्तिमः दिवसः अस्ति। मतदानम् आगामिमासस्य 6 दिनांके भविष्यति। मतगणना च आगामिमासस्य 9 दिनांके भविष्यति। भारतेन स्वघोषितः पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्तायोगः अस्वीकृतः। भारतस्य कथनमस्ति यत् अवैधेन बलपूर्वकेण च आधिपत्येन अधीन भारतीय प्रदेश सम्बद्धासु व्यवस्थासु प्रवेशाय पाकिस्तानस्य कश्चिदपि वैधानिकाधिकारः नास्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार उपहिमालय पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 2.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही 93% और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 5:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:19। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से आज दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगा।

0: आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 पर आप सुन पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के 2026 के उद्घाटन समारोह का दिल्ली से सीधा प्रसारण। इसके साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज माहव्यापी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने भगवान विश्वकर्मा को शिल्प कला का प्रतीक बताया। कदमतला और श्री विजयपुरम के बीच चलने वाली बस सेवा के प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक आध स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज देश भर में माहव्यापी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और आज भी जारी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी सिलिकॉन से सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम विषय पर आयोजित की जा रही है। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आज पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है।

इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दिव्य वास्तुकार के रूप में पूजनीय भगवान विश्वकर्मा रचनात्मकता, कौशल, शिल्पकला और समर्पण के प्रतीक हैं। उनके आदर्श हमें हर प्रयास में कड़ी मेहनत, उत्कृष्टता और नवाचार को महत्व देने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों, श्रमिकों तथा राष्ट्र निर्माण में लगे लोगों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने का अनुरोध किया। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले दिन द्वीप समूह में वर्तमान में चल रही प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रशासन द्वारा दी जा रही प्रस्तुति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक रविन्द्र सिंह यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा, आयुक्त सह सचिव डॉ. सचिन शिंदे और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात कर द्वीप समूह के विकास तथा प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद अध्यक्ष ने नगरपालिका क्षेत्रों में लागू की जा रही विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें उन्हें समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी ने पार्टी सदस्यों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात कर विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, विज्ञान भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कल लोक निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्वीप समूह के समग्र विकास और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में कल राजभाषा विभाग के हिंदी टंकण प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों, कार्यालयों तथा नराकास के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज सुबह 10 बजे राजभाषा विभाग के हिंदी टंकण प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों और कार्यालयों के मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हिंदी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बस सेवा और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से कदमतला और श्री विजयपुरम के बीच चलने वाली KT2 बस सेवा के प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। अब ये बस सुबह 4 बजे श्री विजयपुरम से कदमतला के लिए प्रस्थान करेगी और कदमतला से सुबह 4:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए छूटेगी। इसके अलावा KT1 बस सेवा अपने वर्तमान प्रस्थान समय दोपहर 12:45 पर ही उपलब्ध रहेगी और इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये संशोधित सेवा 10 दिनों के बाद लागू होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक द्वीपों के अधिकांश भागों में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर तक रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 20 सितम्बर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर छात्रों के लिए ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉ. के. सिलम्बरासन ने ओजोन परत के महत्व, ओजोन क्षरण के कारणों और प्रभावों और सामूहिक पर्यावरणीय कार्रवाई की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. पल देवदास ने पर्यावरण जागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए टिकाऊ व जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उधर विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर भारतीय वनस्पति

0: सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह ने नया शहर स्थित वनस्पति उद्यान में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न दुर्लभ विलुप्त होने वाले और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के पौधे लगाए। शिक्षा निदेशालय और IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन IIT मद्रास ने कल द्वीपों के चयनित सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी संचालित शैक्षणिक सहायता मेंटरिंग और नवोन्मेषी शिक्षण पहलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस ज्ञापन का आदान प्रदान शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मोहन सत्यरंजन के बीच हुआ। विद्या शक्ति पहल के तहत द्वीप समूह के 9 शैक्षणिक क्षेत्रों के 100 सरकारी स्कूलों में छात्रों को ऑनलाइन शैक्षणिक मेंटरिंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी। ये साझेदारी भौगोलिक दूरी को कम करने, शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने और कक्षा के स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करेगी। कन्यापुरम में HT लाइन की सफाई और क्षतिग्रस्त LTABC को बदलने का कार्य किए जाने के कारण 19 सितंबर को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ये कटौती कमसरत डैम, कड़ाकाचांग, मॉडल विलेज, पडाक बगीचा, मनारघाट, मलापुरम, राइटम्यो, शोलबे पंचायत क्षेत्र, फरारगंज साइट कार्यालय और कन्यापुरम क्षेत्र में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज महाव्यापी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने भगवान विश्वकर्मा को शिल्पकला का प्रतीक बताया। कदमतला और श्री विजयपुरम के बीच चलने वाली बस सेवा के प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम देश रागनी।

देशभक्ति के सुरों से सजा कार्यक्रम देशरागनी में आप सभी का मैं फातिमा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धरती माँ की मिट्टी की महक ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आती ठंडी हवाओं में घुलती, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम और नदियों से कलकल बहते पानी का एहसास मात्र से दिल को जो सुकून का एहसास कराती है वो है भारत। ये वो भारत है जिसकी आन बान और शान की गाथा पूरे विश्व में गूंजता है।

0: देश वो एहसास है जो तिरंगे को देखकर आंखों में चमक आ जाए, जो राष्ट्रगान सुनते ही सीना गर्व से फूल जाए। ये एहसास हर हिंदुस्तानियों के दिल में एक जुनून सा धड़कता है और खून के हर कतरे में बहता है। हमारा भारत अनेकता में एकता का मिसाल, जहां हर भाषा में प्यार, हर संस्कृति में अपनापन और हर दिल में बसता हिंदुस्तान है।
1: हमारी सुबह शाम रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी एकता और विविधता में ही है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुस्तानियों का गर्व है। जहां जाति, धर्म, भाषा और वेशभूषा में विविधता होने के बावजूद भी एक दिल, एक राष्ट्र बनकर एकता का प्रमाण देता आया है और देता रहेगा।

तो आइए श्रोताओं, भारत के इस अनमोल विरासत को संजोएं, इसकी एकता के दीप को जलाए रखें, भारत को सींचे और भारत की शान को और बढ़ाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय सवेरे के 7:30 पेश कर रहे हैं कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: जैसा बीता हुआ कल था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा आने वाला कल नहीं होगा। जैसा बीता हुआ कल था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है वैसा आने वाला कल नहीं होगा। जी हाँ श्रोताओं, बीते हुए कल से सबक लेकर आज को एक नए अवसर के रूप में लेना और आने वाले कल को नई उम्मीद के साथ शुरू करना समझदारी कहलाती है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में मैं फातिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। आइए श्रोताओं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का रुख करते हैं पर्यावरण की तरफ और सुनते हैं श्री एस एल विंजीत की वार्ता।
1: हमारे खाने और जीने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने दिनों में हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ घनिष्ठ सामंजस्य में रहते थे तथा उनके खाने की आदतें मौसम, स्थानीय उपलब्धता और पर्यावरण के अनुकूल होता था। हालांकि

आज आधुनिक युग में जहां हमारे जीवन जीने के तरीके बदले हैं, उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर भी हमें बहुत गंभीर नजर आ रहा है। श्रोताओं, आज के इस वार्ता में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है खान पान और रहन सहन की प्राचीन पद्धति और पर्यावरण। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी खान पान और रहन सहन की प्राचीन पद्धति का हमारे पर्यावरण के साथ कैसा सामंजस्य था और किस प्रकार यह आज के परिप्रेक्ष्य में बदल रहा है, जिसका हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर हमें साफ नजर आ रहा है। प्राचीन समय में मानव आहार मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित था। लोग जंगली फलों, सब्जियों, मेवों, बीजों और जानवरों के प्रोटीन पर निर्भर रहते थे, जो उनके आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे। इस निर्वाह जीवन शैली ने न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ को बढ़ावा दिया, बल्कि विविध प्रकार के आहार को भी बढ़ावा दिया। मौसमी विविधताओं ने भोजन के विकल्पों को निर्धारित किया और लोगों ने प्रकृति की लय के अनुकूल होना सीखा। लगभग 10,000 साल पहले कृषि का उदय हुआ, जिसने खाने की आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। खेती के आगमन से अधिक स्थिर खाद्य स्रोत प्राप्त हुए। प्रारंभिक कृषि समाजों ने अनाज, फलियां और जड़ वाली सब्जियों सहित कई तरह की फसलें उगाई। इन प्रथाओं ने फसल चक्र और बहु कृषि पर जोर दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिली। इसके अलावा पारंपरिक खाद्य संरक्षण विधियां जैसे कि सुखाना, किण्वन यानी फर्मेंटेशन और अचार बनाना, यह सुनिश्चित करती है कि आधुनिक प्रशीतन पर निर्भरता के बिना पूरे वर्ष भोजन को संग्रहित और खाया जा सके। पहले के समाजों में मनुष्यों और पर्यावरण के बीच पारस्परिकता की एक मजबूत भावना थी। स्थिरता की अवधारणा स्वाभाविक रूप से दैनिक जीवन में बुनी गई थी। लोगों ने समझा कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन कमी का कारण बन सकता है और कई समुदायों ने भूमि और उसके चक्रों का सम्मान करने के लिए सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास किया। अनुष्ठान और परंपराएं अक्सर कृषि त्योहारों के इर्द गिर्द केंद्रित होती थीं, फसल का जश्न मनाती थी और जीवन की परस्पर संबंधता को स्वीकार करती थी। पर्यावरण पर इन ऐतिहासिक खाने की आदतों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जैव विविधता पर जोर देने वाली पारंपरिक खेती की पद्धतियों ने आधुनिक औद्योगिक कृषि की तरह संसाधनों को उसी दर से कम नहीं किया। फसल चक्र और मिश्रित खेती जैसी प्रथाओं ने मिट्टी के स्वास्थ्य में योगदान दिया, कटाव को रोका और पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखा। इसके अलावा स्थानीय खाद्य प्रणालियों ने परिवहन से संबंधित उत्सर्जन को कम किया, क्योंकि भोजन का सेवन उसके उत्पादन के स्थान के करीब किया जाता था। इसके विपरीत आज की खानपान की आदतें वैश्वीकरण, सुविधा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अभूतपूर्व निर्भरता की विशेषता रखती है। कृषि के औद्योगिकरण ने मोनोकल्चर को जन्म दिया है, जहां एकल फसलें विशाल भूभाग पर हावी हैं, जिससे जैव विविधता में उल्लेखनीय कमी आई है। यह प्रणाली पारिस्थितिक संतुलन पर उच्च पैदावार और आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर मिट्टी का क्षरण, पानी की कमी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। इसके अलावा आधुनिक आहार पशु उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। खासकर विकसित देशों में मांस, डेयरी और अंडों की मांग आसमान छू रही है, जिससे फैक्ट्री फार्मिंग जैसी प्रथाएं चलन में हैं। ये सुविधाएं पशु कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर लाभ को प्राथमिकता देती है, जिससे वनों की कटाई, प्रदूषण और महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान होता है। उदाहरण के लिए पशुधन खेती वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 14.5% के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से पाचन के दौरान जारी मीथेन और खाद्य प्रबंधन से नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से। समकालीन खाने की आदतों का एक और महत्वपूर्ण पहलू खाद्य अपशिष्ट की चौंका देने वाली मात्रा है। यह अनुमान लगाया गया है कि मानव उपभोग के लिए उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों में से एक तिहाई बर्बाद हो जाता है, जो न केवल संसाधनों की हानि को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरणीय मुद्दों को भी बढ़ाता है। खाद्य अपशिष्ट लैंडफिल में विघटित होने पर मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है और उस भोजन को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले

संसाधन, भूमि, पानी, ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। अतीत में संसाधनों की कमी और भोजन की खपत के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण के कारण खाद्य अपशिष्ट न्यूनतम था। लोगों ने अपने द्वारा प्राप्त भोजन के हर हिस्से का उपयोग करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे। हालांकि आज सुविधा और अधिकता की संस्कृति अक्सर खाद्य मूल्य की उपेक्षा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। हमारे वर्तमान खाने की आदतों के परिणामों को पहचानना अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत की प्रथाओं को अपनाने से मूल्यवान सबक मिल सकते हैं। जैविक खेती, परमाकल्चर और पुनर्योजी कृषि की ओर एक बढ़ता हुआ आंदोलन है, जिसमें सभी पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जैव विविधता को प्राथमिकता देते हैं। ये विधियां न केवल स्थायी रूप से भोजन का उत्पादन करती हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी बहाल करती हैं और कार्बन को अलग करती हैं। खान पान की बदलती आदतों के बाद हम नजर डालते हैं कि किस प्रकार हमारे रहन सहन के तरीके ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवन शैली में आए बदलाव ने पर्यावरण को काफी हद तक प्रभावित किया है, अक्सर हानिकारक तरीके से। इन परिवर्तनों के प्रकट होने के कुछ मुख्य पहलू पर बात करते हैं। हाल के दशकों में ग्रामीण से शहरी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे शहरों का विस्तार हुआ है, जो अक्सर प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करते हैं। सड़कों और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण ने हरित स्थानों की जगह ले ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आवास नष्ट हो रहे हैं और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। शहरी फैलाव गाड़ियों पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, जिससे जीवाश्म ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अधिक सड़कें और पार्किंग स्थल भी हीट आइलैंड प्रभाव में योगदान करते हैं, जहां शहरी क्षेत्र अपने ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली ऊर्जा गहन उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर बहुत अधिक निर्भर है। हीटिंग और कूलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक ऊर्जा की खपत में उछाल आया है। यह वृद्धि अक्सर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। ऊर्जा और सामग्री के लिए गैर नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण और उपयोग बढ़ गया है। फ्रैकिंग और खनन जैसी प्रथाएं न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं, बल्कि प्रदूषण और आवास क्षरण में भी योगदान देती हैं। उपभोक्तावाद के उदय के परिणाम स्वरूप एक फेंकने वाली संस्कृति बन गई है, जहां वस्तुओं को अक्सर एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे लैंडफिल और भस्मीकरण सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। प्लास्टिक की सुविधा ने पैकेजिंग और उत्पादों को बदल दिया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे सामने आए हैं। प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों साल लगते हैं और बहुत कुछ महासागरों में समा जाता है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। आधुनिक आहार अक्सर आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जिससे परिवहन से उच्च कार्बन पदचिन्ह बनते हैं। इस वैश्वीकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को भी बढ़ावा दिया है, जिन्हें आमतौर पर उत्पादन और पैकेजिंग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन शैली, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपयोग, भू निर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में पानी की मांग करती है। इससे स्थानीय जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन हो सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य समुदायों के लिए उपलब्धता कम हो सकती है। शहरी अपवाह, कृषि पद्धतियां और औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। इन स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में निजी वाहनों की ओर जाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। कई शहरी क्षेत्रों में कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का अभाव है, जिससे कार पर निर्भरता से दूर जाना मुश्किल हो जाता है। व्यापार की वैश्वीकरण ने लंबी दूरी पर माल के परिवहन को बढ़ावा दिया है। यह न केवल उत्सर्जन में योगदान देता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य प्रणालियों को भी कम करता है, जिससे समुदाय वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

0: आधुनिक जीवन शैली के कारण अक्सर प्राकृतिक वातावरण से वियोग होता है। शहरीकरण, गतिहीन आदतें और स्क्रीन टाइम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और प्रकृति के प्रति प्रशंसा की कमी का कारण बन सकते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। गतिहीन जीवन शैली के कारण खराब आहार विकल्प और शारीरिक गतिविधि की कमी स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और सार्वजनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं, हमारे जीवन की आदतों में बदलाव ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म दिया है। शहरीकरण और ऊर्जा की बढ़ती खपत से लेकर अपशिष्ट उत्पादन और आहार में बदलाव तक, इन परिवर्तनों ने अक्सर स्थिरता पर सुविधा और दक्षता को प्राथमिकता दी है। हालांकि इन प्रभावों को पहचान कर हम अपने दैनिक जीवन में अधिक पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना शुरू कर सकते हैं। स्थिरता, संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव पर जोर देने से इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
1: पर्यावरण कार्यक्रम के तहत खान पान और रहन सहन की प्राचीन पद्धतियां और पर्यावरण विषय पर अभी आप सुन रहे थे श्री एस एल विंचित की ये वार्ता। और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर। फिल्म रॉय का ये गीत लिखा है अभेंद्र कुमार ने और धुन बनाई है अंकित तिवारी ने।

0: अंकित तिवारी की आवाज़ में ये था फिल्म रॉय का गीत। अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्ते, गोयनकास की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयनकास में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयनकास से। गोयनकास की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक

0: की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। और अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में जब वी मेट फिल्म का गाना। इरशाद कामिल के लिखे बोलों को धुनों में पिरोया है प्रीतम ने।

सुतोहार जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। हार से मिली सीख से आगे बढ़ना मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाती है। अब गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से मैं फातिमा लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

वेवलेंथ 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक

0: मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई

0: से उसको प्रोत्साहन मिला है, खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद।

0: अजया, प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. US House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
3: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6 country roundtables designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment and chip design to fabrication, advanced packaging, electronics and systems. It will feature more than 600

अभी आप सुगम संगीत के तहत जगजीत सिंह और सलमा आगा को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। तराने सुहाने कार्यक्रम का आगाज जांबाज फिल्म के गाने से कर रहे हैं। आवाजें किशोर कुमार और सपना की। इंदिवर के लिखे बोलों को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है अपराध।

0: अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।
1: Drive smart, drive Maruti Suzuki Alto Caton. Display hai mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags. Next Gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine or spacious interiors. Buy offers up to 40,500. Offers stock rehne tak hi.
2: Aaj hi visit kare apne nazdeeki Maruti dealership. Sharte lagu.
3: Main hoon HIV virus. नाम तो सुना ही होगा, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने उठने बैठने पढ़ने काम करने से बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तरानी सुहानी कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म का गाना। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ दी

सौरभ कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। जब प्यार किसी से होता है फिल्म के इस गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अपनी पहली सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नीला भट्टा रंगनायक शर्मा का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर बीवी दुर्गा भवानी और मृदंगम पर भास्करा भट्टा कृष्णामूर्ति ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए नीला भट्टा रंगनायक शर्मा का गाया राग हमसा ध्वनि, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति दीक्षितर की।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: डू यू प्ले फॉर द रश और डू यू प्ले इट स्मूथ? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
4: लीजिए अब सुनिए नीला भट्टा रंगानायक शर्मा का गाया राग कृति ग्वाला। ताल है आती कृति त्यागराजा की।

अंत में सुनिए राग सुनंदा विनोदिनी, ताल है आदि, कृति मैसूर वसुदेवाचार का।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप नीला भट्टा रंगानायक शर्मा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1374वीं कड़ी।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन

श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा।

वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य

0: मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार? कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने

0: के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग

0: अलग प्रयोगशालाएं हैं जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को

0: कह दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1374वीं कड़ी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।

0: विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।
1: नमस्कार। नई दिल्ली के यशो भूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन है जो 17 तारीख से यानी आज से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। आज इसका उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी उपस्थित जनसमूहों को और साथ ही इस आयोजन से जुड़े हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप आयोजन का विवरण सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सब सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सेमिकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि यशोभूमि में 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं जो अपनी मौजूदगी से भारत में सेमिकॉन जो

0: prefect in having more advanced technologies, as well as it will create huge, huge employment opportunities for the youth of India.
1: जी बिल्कुल. और अब जो चिप है उसे हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा उपकरण है जो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित है. ये कारों से लेकर ड्रोन्स तक, विमानों तक, एमआरआई मशीनों तक, उपग्रहों तक, सभी में लगा होता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमरों द्वारा इस समय यहाँ पर एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर. और CDIL
0: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon, and this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
1: जी, और जो उपस्थित जनसमूह है इस समय करतल ध्वनि से इस पल का स्वागत करता हुआ, यहाँ पर छवियां दिखाई जा रही हैं अलग अलग इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई. और इस तरह से सेमीकॉन 2026 का उद्घाटन सत्र जो है बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है. और साथ ही हमें ये बताता हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है और चिप बनाने वाली फैक्ट्री से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है. इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे. और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है. हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल. और यहाँ एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का.
0: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव. एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors, and that is what everything is now based on, these small chips which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
1: जी बिल्कुल. और मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही निवेश का हब बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को, इसने एक पूरा इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं. और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना, और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना, और जो स्टार्टअप जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, एक ऐसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ. और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है. और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड एज द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव मेंशन, एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी.
2: Thank you. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितेन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, डेलीगेट्स, और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के, भारत के भविष्य, ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों,

सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक

पूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सैनिकों के आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदल गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइंस से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकल हुए इस बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अभी मोहाली में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी वर्षों को लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन के बाद प्रोडक्शन के लिए जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी रहा है, भारत ने सेमी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं।

हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है। और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग

70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल,

आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें, इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते दो वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। AI के लिए जो चिप बन रही हैं उनका इस्तेमाल AI डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे AI का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में

0: हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। 2 से 160 न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was addressing the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honorable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled at Yashobhumi. The Honorable Prime Minister in his speech mentioned that the month of September started on a very positive note for India, with the recording of 7.8% growth rate in the first quarter of 2026. The Prime Minister also mentioned that India is committed to inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India as a success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has been achieved by India. India is also using nuclear energy, and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy, and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains

0: chips should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख

0: शुभकामनाएं दी और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखे लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामे और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।
2: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 12:02 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
3: మీడియం వ్యూ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం నుంచి నేటి ప్రసారం ప్రారంభం.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार

0: हमारी प्रेरणा भी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितम्बर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों,

आकाशवाणी श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी का कंप्यूटर का ज्ञान हो और उनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे

प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए शीलाधर का गाया गालिब का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप शीलाधर की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें अपने फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। श्रोताओं, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने फरमाइश की है फिल्म तुम्हारे लिए के गीत के लिए। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत रचना नेक्स्ट लयालपुरी का है तथा संगीत जयदेव का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा सुनना चाहते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत। गायक कलाकार है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। गीत रचना समीर की तथा संगीत नदीम श्रवण का है। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

हैडो लिलीपुर से अभिषेक और दिव्या सुनना चाहते हैं फिल्म हमारा दिल आपके पास है का ये गाना। गायक कलाकार है कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने।

लीजिए अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत। फरमाइश करने वाले श्रोता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपोन ताड़े और आशीष मुनहेकर। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। गीत रचना राजेंद्र किशन की तथा संगीत कल्याण जी का है।

मेरठ कैंट से दिव्य दर्शन और कविता गौड़ सुनना चाहते हैं फिल्म आज का अर्जुन का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। गीतकार अनजान तथा संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
3: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
2: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
4: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई

0: आई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के
2: सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटीय इलाकों पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अत्यधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 20 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के

में पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों

उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: विविध भारती
4: FM 3 विजयपुरम
5: 100.9 आपका हम सफर।

0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गाने आपको सुनवाए उसके नाम हैं सिर्फ तुम, बंटी और बबली, कर्मा, हम तुम्हारे हैं सनम, परदेस, दिल परदेसी हो गया और कच्चे धागे। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राजेश्वरी। कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। बादल जब आसमान में छाने लगते हैं, बीते हुए कुछ पल याद आने लगते हैं। बारिश की हर बूंद में छिपी है एक कहानी और हम किसी अपने को फिर से गुनगुनाने लगते हैं, जैसे ये गुनगुना रहे हैं।

बादल की छाँव में प्यार का एहसास होता है, बादल की छाँव में प्यार का एहसास होता है, हर बूंद में जैसे कोई मीठा राज होता है। जब तुम पास होते हो मौसम भी मुस्कुराता है, और दिल को हर पल बस तुम्हारा इंतज़ार होता है, जैसे बादल यूँ गरजता है।

बादल तो बरस कर अपना दर्द मिटा लेते हैं, बादल तो बरस कर अपना दर्द मिटा लेते हैं, हम हैं कि यादों में ही आंसू बहा लेते हैं। तुम दूर हो तो मौसम भी उदास लगता है, तेरी कमी में हम हर पल तन्हा रह लेते हैं।

काले बादल आए, सावन का संदेश लाए, सुनी राहों में जैसे खुशियों के दीप जलाए, मन के आंगन में फिर गीतों की बहार आई और प्रकृति ने प्रेम की नई धुन सुनाई।

इन नमचेंस ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 गंबाना में हिग स्टोरी में ने काका में आइए तारोखरे क्रिएटर्स राजदाई आंको निकुट बनाने रंडा माने ने बार आइलेन असाम प्लेटफॉर्म तारे लगे इन नमचेंस ऑफ इंडिया चैलेंज तनेर के निरन्तर ताफूल चूकी हम तुमने तरुल कायन तनु एंड्रे तनहारी तिंद्री कैंड्रे ऐ आंको ने बनाम रे हे तुमने तरुल कायन ट्रेडिशन ही होल्डर तब तक स्टोरी ते लोकल आंको बनाम रे आनुनुन तह हम तु तही असानु कंटेंट तसानु कल्चर हेरिटेज टूरिज्म बोडेनशियल ट्रेडिशनल आर्ट हे इंस्पायरिंग लोकल स्टोरीज इन रे इन मिनट डिस्ट्रिक्ट ही नु वीडियो ट अपलोड लगते ही न हे नेट हे लुई मिनट इन लाइन ने ट्रू नाम वे ओडीटी प्लेटफॉर्म रूल लगाने के लिए तरे तक ही ए रजिस्टर टर्मिनेट हे एनरोलमेंट टर्मिनेट रे इन माय वे सेक्शन नाम वे ओडीटी प्लेटफॉर्म असली इत लुई अना अलांग सेप्टेम्बर चिंगे अलांग तने के नेरना ताफूल मिने इन हे तने इन इत सलक नरवाही लमिन तनु अपलोड लर वीडियोस असाने लेवल नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल न तनियाना कंज नाम स्टेट लेवल न 2 लाख नाम नेशनल लेवल न 5 लाख असु अप्रित हक कतही रजिस्टर लरना इन नाम वेव एप्स नाम अपलोड लर वीडियोस त हे नेट हे लुई मिनट इन लाइन

هجر تكون نياوة إن تكون بنام هجر نعفي تري نعفي إن لا هنري.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या है? आपके सीखने की शैली। बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी। उनकी सूची अस्थायी थी। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती है एवं अंतिम 2 वे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: बहुप्रतिभा के प्रकार, दृश्य संबंधी, स्थानिक प्रतिभा, दृश्य को समझने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोग चित्र के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो तथा फिल्म देखने में

आनंद आता है, उनके कौशल में शामिल है। पहेलियां बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप कलाकार, स्कल्प्टर या पेंटर बनना, प्रतिबिंबों में हेर फेर, निर्माण दृढ़ करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों व्याख्या करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां: नाविक, शिल्पकार, दृष्टि कलाकार यानी चित्रकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स, शाब्दिक। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट दोस्तों, वी हैव शाब्दिक यानी बहुभाषा प्रतिभा, शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोगों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। ये चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। उनके कौशल में शामिल है सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां हैं दोस्तों, कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले तार्किक एवं संख्यागत तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाना है। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं प्रयोग करना पसंद करते हैं। उनके कौशल में शामिल है समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों एवं श्रेणी में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांत के स्थित कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव दैहिक यानी इंद्रियगत प्रतिभा, शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षता पूर्वक पकड़ने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले अपने आप को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन्हें संतुलन एवं हाथ से आंख के समन्वय का अच्छा बोध होता है। उदाहरण के लिए गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स, अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद एवं प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं। उनके कौशल में शामिल है नृत्य, शारीरिक समन्वय, खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना। करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों, एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता, कारीगर। मूविंग अहेड वी हैव संगीतज्ञ तालग्रही प्रतिभा, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता। संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। वे संगीत में जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए झिंगूर, घंटिया, नल से टपकता पानी। इनके कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। करियर के लिए संभव मार्ग है वादक, डिस्क जॉकी।

संगीतकार, अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, अन्य को समझना एवं संबंध स्थापित करने की प्रतिभा, ये विद्यार्थी बातों को अन्य लोगों के नजरिए से देखते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरणा को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। वे बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, हालांकि कभी कभी वे गड़बड़ का सहारा भी लेते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांत बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्य से संवाद आरंभ करने के लिए वाक् जैसे कि बोलना एवं अवाक् जैसे कि नज़र मिलाना, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनके कौशल में शामिल है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना, दोहरे परिप्रेक्ष्य, समानुभूति का उपयोग करते हुए अन्य लोगों के मूड और भावनाओं को समझना, समूह के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहित एवं इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से और गैर संचार मौखिक रूप से संवाद करना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना। करियर के लिए संभव मार्ग है परामर्शदाता यानी काउंसलर, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी। तो दोस्तों, ये थी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है 4:40। अब सुनिए कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम के तहत श्रीमती रेखा यादव से की गई बातचीत का विषय रहेगा परिवार की आर्थिक को मजबूत करने में महिलाओं की भागीदारी। छः बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे श्रीमती आशा गुप्ता का लिखा नाटक तुम कहो तो। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का वक्त रहेगा 7:20। 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा युवा संसार। रात 8 बजे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। इस कार्यक्रम के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट, 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुनेंगे, जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कल प्रातः एग्री टिप्स कार्यक्रम में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा मुर्गियों में रानी खेत की बीमारी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम 6:10 पर। 6

15 मिनट पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दीवानगी शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर आप सुन पाएंगे गांधी चर्चा की 11वीं कड़ी। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे गुड मॉर्निंग अंडमान सुबह 7:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में 8:30 पर कलाकार होंगे कमलिनी मल्होत्रा और प्रद्युमन शर्मा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का वक्त रहेगा सुबह 9 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे PCR व्यास का हिंदुस्तान शैली में गायन। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का वक्त रहेगा सुबह के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे कल दिन के 11 बजे। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम का वक्त रहेगा दोपहर के 12 बजे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित होगा। 1:10 पर आप सुन पाएंगे महफिले कवाली। 1:30 पर पेश होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर अपनी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड। 3:30 पर आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ। ये थे कुछ आज और कल के शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम में पहले सुनिए दामिनी फिल्म का गीत कुमार सानू व साधना सरगम की आवाज़ों में। इस गीत के संगीत निर्देशक हैं नदीम श्रवण और बोल है समीर के।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने

श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति व मनहर के स्वरों में सौदागर फिल्म का गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अल्फाज है आनंद बख्शी की।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल अमुदम वणकम नेयर्गले।

0: थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल हीरोज और हिडन डेस्टिनेशंस, योर स्टोरी मैटर्स. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: এর সঙ্গে শেষ করব আমাদের আজকের বাংলানুষ্ঠান। প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরাম কেন্দ্র থেকে। বাংলানুষ্ঠান থেকে আমি অনন্যা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি।
2: শ্রোতাও, অভি আপ বাংলা কার্যক্রম শুন রহে থে। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच
4: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
7: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ एक खूबसूरत विचार से करते हैं। साथियों, हमारा आज का विचार है, समय और शब्द दोनों अनमोल होते हैं, एक लौट कर नहीं आता और दूसरा लौटाया नहीं जा सकता। साथियों, सबको सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथों में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे ये तो आपके हाथों में ही है। इसलिए हमेशा दूसरों का साथ दे, पता नहीं कब ये पुण्य जिंदगी में आपका साथ दे जाए। बेहद खूबसूरत विचार के साथ हम कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। साथियों, आइए कार्यक्रम के शुरू में हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, ताकि आपको प्रश्न के उत्तर सोचने में थोड़ा समय मिल जाए। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए ये आपको बताना है। किसान भाइयों, प्रश्न एक बार फिर सुने, बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए ये आपको बताना है। प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही देंगे। किसान भाइयों, अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर।
2: किसान साथियों, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 में शुरू की गई मिशन है। इस मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई थी। मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB कृषि एवं किसान कल्याण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को प्रदान करता है मधुमक्खी कॉलोनियों की निगरानी के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण, सभी मौसमों में मधुमक्खी कॉलोनियों के प्रबंधन के साथ साथ मधुमक्खी के

शत्रुओं और रोगों की पहचान और प्रबंधन, मधुमक्खी पालन उपकरण से परिचित कराना, शहद निष्कर्षण एवं मोम शोधन। चलिए अब आपको बता दें कि हनी मिशन के उद्देश्य क्या हैं। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना। अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पादन माना जाता है। अन्य मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे रॉयल जेली, मोम, पराग आदि का भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल, भोजन, पेय, सौंदर्य और अन्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा और मधुमक्खी कॉलोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा प्रदान करेगा। खेती के तरीके से घरेलू और राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है।

0: को रोकेगा और मधुमक्खी कॉलोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा प्रदान करेगा। खेती के तरीके से घरेलू और राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक बड़े कारक के रूप में उभर रहा है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से किसानों की आय दुगुनी होगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।
1: किसान साथियों, अभी आपने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर ये जानकारी हासिल की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो घर पर बैठकर कुछ ना कुछ काम करती हैं ताकि वे अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। आज ग्रामीण बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने को एक नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर रही है और कई महिलाएं ऐसी हैं जो सफलता भी हासिल की। साथियों, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर भी छोटे मोटे व्यवसाय करती हैं जिससे उनको बेहद फायदा होता है। इसी सिलसिले में साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कड़ाका चांग की रहने वाली श्रीमती रेखा भगत के साथ, जिनके साथ आज बातचीत का विषय है परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने में महिलाओं की भागीदारी। आइए सुनते हैं ये बातचीत।

0: रेखा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम, मेरा नाम रेखा भगत है, मैं कड़काचान से हूँ, SSG ग्रुप का मेंबर हूँ।
0: आपने SSG ग्रुप का नाम बताइए।
1: हाँ, मेरा SSG ग्रुप का नाम है तरंग ग्रुप है।
0: तरंग ग्रुप
1: जी।
0: इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं?
1: हम लोग का ग्रुप मेंबर्स है मैडम 10 मेंबर हैं।
0: 10 मेंबर्स
1: जी।
0: हैं। आप इस ग्रुप से कब से जुड़ी हैं?
1: हम तरंग ग्रुप में हम जुड़ी है 2017 से जुड़ी है मैम।
0: काफ़ी लंबे टाइम
1: जी
0: से आप
1: जी
0: इस ग्रुप
1: जी
0: का मेंबर हैं,
1: जी जी
0: तो ग्रुप में जो होने वाली गतिविधियां एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ज़रा बताइए।
1: हाँ मैडम, हम लोग का SSG ग्रुप जो तरंग है नाम, उससे हम लोग को ट्रेनिंग मिली है सिलाई कढ़ाई, गाय बकरी मुर्गी पालन, सब्जी गाड़ना, और जैसा एक बरी बोलते ना, बरी दाल का जो बरी बनता,
0: हाँ
1: हाँ
0: बनता
1: हाँ
0: है
1: जो
0: जी
1: पापड़ बनाते उससे भी
0: जी जी
1: जी, वो सब का ट्रेनिंग मिला। तो जैसा नारियल जो वेस्ट जो रहता, हम लोग अंदर से नारियल को निकाल देते, फिर उसका जो कटोरी रहता
0: खोल, हाँ खोल
1: खोल,
0: नरेटी,
1: हाँ वो सब सबका भी ट्रेनिंग मिला है हम लोग को।
0: उससे आप क्या क्या बनाते हैं?
1: वो नारियल का खोल से
0: जी
1: जी, वो जो घर का सजावट जो रहता है ना,
0: डेकोरेशन का सामान।
1: डेकोरेशन का, हाँ वो सब बनाते हैं उससे
0: अच्छा,
1: जी।
0: और
1: और नारियल का जो रस्सी जो बनता,
0: जी
1: हाँ वो रस्सी भी बनता, वो सब भी ट्रेनिंग दिए। और नारियल का रस्सी से मैट भी बनता,
0: आपने
1: हाँ
0: बनाए,
1: बनाए हैं मैम उससे।
0: आपका जो ये सामान है, जैसे आपने बताया कि नारियल की नरेटी का उपयोग की भी हमें ट्रेनिंग मिली है, और
1: जी
0: आप बता
1: जी
0: रही हैं कि आपने बनाए भी हैं,
1: जी जी जी
0: तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको बना के आप कहाँ पर सेल करने के लिए ले जाती हैं?
1: मैम, ये सब बना के ना हम लोग, जैसा कभी कभी स्टॉल लगता है ना, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, गांधी जयंती हो गया, वो सब सब में हम लोग लेके जाते।
0: तो उसमें आपको अच्छे दाम मिल जाते
1: जी
0: हैं,
1: मैम, हम लोग अच्छी दाम मिल जाती,
0: सारा बिक्री हो
1: सारा
0: जाता
1: बिक्री
0: है।
1: हो जाती जी।
0: अच्छा, इसके अलावा और आपके SSG ग्रुप में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं?
1: हाँ मैडम, हम लोग का SSG ग्रुप में और भी है, जैसे किसी को पैसा का जरूरत पड़ गया तो
0: जी
1: उसमें हम लोग जो हर महीना जो तृप्त बोलते
0: जी
1: जी, वो जो हम लोग जमा करते हैं उससे लोन का हिसाब में देते हैं उसको, जरूरत मेंबर्स हो उसको लोन का थ्रू से हम लोग देते
0: ताकि उसकी मदद हो
1: जी,
0: सके।
1: ताकि उसको मदद हो सके। अभी हम लोग का ग्रुप से जो लोन देंगे तो आपको अभी आप बोलेगी तो सडनली आपको मिल जाएगा, और आप बैंक में जाओगे तो आपको 2-3 दिन लगेगा। तो ये चीज हम लोग को बहुत फायदेमंद है हम लोग SSG ग्रुप में
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: कि अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो उसको आप लोग के SSG ग्रुप के जरिए, मतलब एकदम साथ के साथ लोन जो है
1: जी
0: वो
1: जी
0: मिल जाता
1: जी
0: है।
1: मैडम
0: आपने कभी अपने ग्रुप से लोन लिया
1: जी मैम, हम लोन लिए हम
0: और वो चुका दिया?
1: जी जी चुका दी,
0: किस लिए लिया था आपने?
1: हम गाय पालने के लिए ली थी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: कितना लोन लिया था?
1: 50,000 ली थी
0: 50,000 लोन।
1: जी।
0: तो वो कितने दिनों में आपने आपने वापस किया उसको?
1: ओ अभी हम 50,000 ली तो उसका 50 का जो ब्याज है 1 रुपया
0: जी
1: जी, वो हिसाब में मतलब वो हम जैसा सकती थी उस तरह हम दे के चुकाई उसको, जैसा हम गाय के लिए ली तो उधर से जैसा आमदनी

0: आता था उस तरह दे दे के हम चुका दें। हम लोग एस एच जी ग्रुप में ऐसा नहीं है कि बैंक बोलेगा कि आपको हर महीना इतना देना, एस एच जी ग्रुप में ऐसा नहीं है, जैसा आप सकोगे उस तरह दे
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कंप्लीट कर।
1: हाँ ये बहुत बड़ी सुविधा है ये, है ना, एसएचजी ग्रुप का बहुत बड़ा ये फायदा है।
0: जी जी
1: अच्छा, आपके एसएचजी ग्रुप में मीटिंग्स वगैरह होती होंगी,
0: जी मैम।
1: तो वो
0: हर
1: कैसे होती
0: महीना
1: है?
0: हम लोग का हर महीना का 7 तारीख को मीटिंग होता है।
1: जी
0: हर महीना का 7 तारीख मीटिंग होगा, टाइमिंग है 3 बजे। वो भी हर एक मेंबर्स का घर में रूटीन होगा हर महीना,
1: ठीक।
0: उसमें तृप्ति जमा होगा, फिर अन्य चंदा होगा। अन्य चंदा मतलब जैसे बैंक आने जाने के लिए, चाय बिस्किट के लिए, उसके लिए। फिर उसके बाद में मीटिंग होगा, सारा मेंबर्स जमा होंगे, सबका बातचीत चलेगा। स्टार्टिंग हम लोग भगवान का नाम लेके स्टार्टिंग करेंगे
1: बहुत अच्छा।
0: मीटिंग का। उसके बाद में तृप्ति जमा होगा, तृप्ति जमा होने का बाद में डिस्कस होगा, किसी को लोन चाहिए, किसी को कुछ मदद है, कुछ परेशानी है। ये नहीं कि अभी हम लोग का ग्रुप का ही मीटिंग चलता, ये यहाँ में नहीं। अगर घर में कुछ भी परेशानी है वो भी यहाँ में बोल सकते, वो सबसे शेयर होगा वहाँ पे।
1: कितनी अच्छी बात है ना। देखिए, आप लोग एक महीने में एक बार मिलते हैं और सब अपने मन की बातें भी करते हैं।
0: जी जी
1: काम की
0: जी
1: बातें तो होती ही
0: होती
1: हैं,
0: ही है
1: है ना,
0: जी।
1: और अपने मन की बातें भी करते हैं, और एक दूसरे से मिलना भी जो है वो आप लोगों का इस तरह से हो
0: हो
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है जी जी
1: हाँ,
0: हाँ
1: कभी आपके किसी एक मेंबर को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो और उसने आप लोगों के सामने आके बुलाओ कि हमें पैसे की ज़रूरत है,
0: जी
1: तो आपके एसएचजी ग्रुप ने मदद की हो, कुछ इस तरह का कोई वाकया अगर आपको याद आ रहा है तो आप हमारे
0: जी
1: साथ बांटिए।
0: हाँ जी मैडम। एक लेडी हम ही लोगों का सची ग्रुप का मेंबर थी, मतलब
1: जी
0: अभी स्वर्गवास हो गया उनका जी,
1: अच्छा
0: हम ही लोगों का मेंबर थी वो। उनको जीबीपंत में ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम, उसको बहुत ज़रूरत था उसको। लेकिन वो मेंबर हम लोग से उम्मीद करी थी और हम लोग भी खरा उतरे, लेकिन ऊपर वाला ये नहीं चाहा कि हम रखे करके, लास्ट में ले गया अपना जगह, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग का एसएचजी ग्रुप बहुत हेल्प किया उनको पैसा के थ्रू में,
1: सब इलाज के लिए,
0: इलाज के लिए। जी,
1: मतलब खड़े पैर जो है उनको इलाज के लिए आप
0: जी,
1: लोगों के ग्रुप के द्वारा पैसा जो है वो
0: जी
1: दिया
0: पैसा
1: गया।
0: जी हम लोग
1: हाँ, एसएचजी ग्रुप होते ही इसलिए हैं कि मदद करने के लिए साथ में महिलाओं को, और जो भी इसके साथ जुड़ा है, इसमें पुरुष भी जुड़ सकते हैं, है
0: जी
1: ना,
0: जुड़ सकते
1: तो
0: जी
1: जो भी ग्रुप में जुड़े हैं उनको जो है वो आर्थिक मदद भी की जाती है, और
0: जी
1: ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपना आजीविका आराम से चला सके।
0: जी जी
1: ठीक है, आप एसएचजी ग्रुप के साथ जुड़कर खुश हैं?
0: जी मैडम हम बहुत खुश हैं।
1: आप क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं अभी तक एसएचजी ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं और आप ही के इलाके की हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं घर जो हाउस वाइफ जो बोलते हैं ना,
1: जी
0: जो एसएचजी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उसको तो हम पहला बात यही बोलने मांगती है कि इतना दुनिया इतना आगे चले गया, आप लोग क्यों इतना पीछे हैं?
1: जी
0: इतना पीछे नहीं रहना, लेडीज को आगे आना है,
1: जी
0: कंधे से कंधा मिला के चलना है, तभी घर चलेगा। और अभी जो भी घर में बैठे हैं महिला लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी देरी नहीं हुआ है, आप लोग बाहर आइए। अगर आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में तो एसएचजी ग्रुप मेंबर से मिलिए, हर महीना मीटिंग हो तो उसमें आके बैठिए, हम मना नहीं है वहाँ में, अदर्स मेंबर्स भी आके बैठ सकते हैं उसमें, उन लोग एडिया ले, उसका बाद में अगर उस लोग अच्छा लगे तो हम लोग से जुड़िए, नहीं तो कोई दूसरा और भी चलता है एसएचजी ग्रुप, उसमें भी जुड़िए, लेकिन जुड़िए,
1: जुड़िए
0: घर में मत
1: जरूर।
0: बैठे रहिए, मेरे से यही उम्मीद है। और इसमें जुड़ के कितना फायदेमंद है वो तो हम अभी बताएगी, लेकिन आप जब जुड़ेंगे तो खुद को एहसास हो जाएगा
1: बहुत बढ़िया
0: जी।
1: बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात की कि जब आप जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि
0: जी,
1: इसके क्या कुछ फायदे
0: फायदे
1: हैं।
0: हैं जी।
1: आपकी बात जो है हमारी महिलाओं तक जरूर पहुंचेगी और वो इस ओर सोचेंगी।
0: जी मैम
1: अच्छा, इसके अलावा आपने हमें ये भी बताया था कि आप कुछ पशुपालन और सब्जी की खेती भी
0: जी
1: करती
0: मैडम
1: हैं,
0: जी मैम
1: तो सब्जी की खेती किस तरह करती हैं, थोड़ा बताइए कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास?
0: हाँ, सब्जी की खेती है मैडम, जैसा हो गया लौकी, कोमड़ा, लोबिया, भाजी, भिंडी, सारे आइटम्स हैं
1: तो ये
0: ये
1: सब
0: सब।
1: आपने अपने घर के मतलब आंगन या घर के पास कोई जगह खाली है, कोई स्पेशल जगह है, या फिर घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी है वहीं करती हैं?
0: नहीं मैडम, सब्जी करने के लिए हम लोग को बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए,
1: जी
0: जैसा हम लोग का जो घर का आंगन का अगल बगल है कि जो बालकनी का तरह होता
1: बिल्कुल
0: जी, उसी में करते। हम लोग को जरूरी नहीं है कि उसके लिए एकदम मट्टी ही होना,
1: जी
0: ऐसा नहीं है। जैसे गमला मुला सब मिलता नहीं,
1: बिल्कुल
0: फलों का जो टोकरी भी रहता है
1: बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल।
0: मट्टी डाल के भी कर सकते हैं हम लोग।
1: अच्छा,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसी में आपने किया
0: जी
1: है,
0: मैम हम उसी में
1: अच्छी
0: करिए।
1: तरह फलन आता है, फलती है अच्छी तरह
0: जी
1: से,
0: मैम अच्छा से फल लाते हैं अपना घर के लिए, सब अगल बगल के लिए भी हो जाती है।
1: आप देती हैं उन
0: जी
1: लोगों
0: जी
1: को,
0: जी जी
1: तो भाई ये भी आपको बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी मदद है सब्जी
0: जी
1: की, अगर सब्जी घर से ही निकल आ रही है, और आपने बताया कि आप खुद तो यूज करते ही हैं, साथ में लोगों को भी।

0: जी
1: देते हैं,
0: जी
1: तो इस तरह सब्जी का खर्चा जो है कुछ हद तक तो जरूर बचता
0: जरूर
1: होगा,
0: बच जाता।
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: उसके बाद आपने बताया आप गाय पालन भी करती
0: जी
1: हैं।
0: जी हाँ जी मैडम, हम गाय पालन करती है। गाय से दूध मिलता, दूध से दही बनाती, गाय का गोबर मिलता, वो खाद बनता है, और खाद से सब्जी में वो खाद को
1: जी
0: डालते जो यूरिया से हटके है,
1: जी
0: मतलब ओरिजिनल खाद है वो, उससे सब्जी का जो पौष्टिक होता वो बहुत बढ़िया होता, बदन के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है, वही सब गाय से मिलता है मेरे को।
1: और घी दूध आप बेच देते हैं
0: जी मैम हम बेच देती।
1: तो उससे भी आपको इनकम हो
0: जी
1: जाती
0: मैडम
1: है।
0: जी मैम
1: तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप SHG ग्रुप से भी जुड़ी हैं और
0: जी
1: उससे भी बहुत सी ट्रेनिंग आपने ली है
0: जी
1: और इनसे आप लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही आप कुछ सब्जी की खेती और गाय पालन करके भी अपने घर की आय में इजाफा कर रही हैं।
0: जी मैम
1: रेखा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपसे इतनी बातें हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने में महिलाओं की भागीदारी। किसान साथियों, अभी आपने इस विषय पर कड़ाका चांग की रहने वाली श्रीमती रेखा भगत के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। बहुत ही विस्तार से उन्होंने अपने बारे में बताया, किस तरह से वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और अपने जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उसको आगे लेकर गई। साथियों, आप भी इस व्यवसाय को करने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं और घर पर बैठकर भी आप कोई ना कोई काम कर सकती हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। किसान साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, गीत संगीत की दुनिया से बाहर आते हैं और ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। किसान साथियों, अगले 5 दिनों के दौरान ये बताया जाता है कि लगातार बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। किसान भाइयों को इस मौसम में अपनी फसल और कृषि जो कार्य करते हैं उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। किसान साथियों, बताया जाता है कि अगले दिनों भारी गरज के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाएं 13 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है। किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी सलाह है जो हम आपको बता दें। साथियों, जल निकासी का उचित प्रबंध करें। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना 55% से 75% तक है, इसलिए खेतों में विशेषकर सब्जी वाली फसलों और नर्सरी में पानी जमा न होने दें। जल निकासी के लिए नालियां साफ रखें। धान और अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक या कीटनाशक का छिड़काव न करें, क्योंकि बारिश के कारण वो बह जाएगा। यदि धान की नर्सरी या फसल इस समय कटाई के चरण में आ रही है तो उसे टालें या कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि अपने पशुओं की देखभाल करें। बिजली चमकने और आंधी तूफान के समय अपने मवेशियों, गाय भैंसों और बकरियों को खुले मैदान या पेड़ों के नीचे ना बांधें। उन्हें पक्के और सुरक्षित छप्पर के नीचे रखें। पशुशाला में नमी बढ़ने से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए वहां साफ सफाई और चूने का छिड़काव करें। किसान साथियों, ये था मौसम पर आधारित कृषि परामर्श जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था बीजू नारियलों के लिए किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजू नारियलों का चुनाव ऐसे पौधों से करना चाहिए जो 60 साल से कम उम्र के हो, कम से कम 80 नारियल प्रतिवर्ष पैदावार देता हो, पौधा स्वस्थ हो और पौधे में कम से कम 30 खुली पत्तियां जरूर हो। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी।

0: साथ ही उसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को

0: पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
3: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज से देश भर में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान की श्रृंखला में आइए बात करते हैं देश के मैरीटाइम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली एक और महत्वपूर्ण कड़ी, सागरमाला कार्यक्रम। तटीय क्षेत्रों के विकास, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक को नई गति देने वाली यह योजना आज भारत के आर्थिक और तटीय विकास का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में कि कैसे सागरमाला परियोजना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को समुद्र तटों के जरिए नई ऊंचाइयां दे रही हैं। मार्च 2015 में शुरू किया गया सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थिति के साथ भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। सागरमाला का लक्ष्य पारंपरिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर परिवहन से हटकर कुशल तटीय और जलमार्ग नेटवर्क की ओर बढ़ते हुए रसद को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत तटीय विकास पर केंद्रित है, जो न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ अधिकतम आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित करता है। सागरमाला कार्यक्रम समुद्री अमृतकाल विजन 2047 का एक प्रमुख स्तंभ है, जो समुद्री मामलों में वैश्विक नेता बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को गति प्रदान करता है। समुद्री भारत विजन 2030 पर आधारित MAKV ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 4 मिलियन GRT जहाज निर्माण क्षमता और प्रतिवर्ष 10 अरब मीट्रिक टन बंदरगाह संचालन शामिल है, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 जहाज निर्माण करने वाले देशों में स्थान दिलाना है। 150 से अधिक हितधारकों के साथ परामर्श और 50 वैश्विक मानकों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई सागरमाला परियोजना में विश्व स्तरीय बंदरगाहों के विकास, तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के विस्तार और सतत नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक रणनीतिक पहलों की रूपरेखा दी गई है। एक प्रमुख सहायक के रूप में सागरमाला लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और जहाजरानी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे 2047 तक भारत के समुद्री विकास में तेजी आएगी। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के

व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। देश के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है, साथ ही लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी संभावित नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यवस्था है। तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रमुख बंदरगाह भारत को वैश्विक समुद्री मार्गों से जोड़ते हैं और माल एवं यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। देश के कुल व्यापार का लगभग 95 भाग मात्रा के आधार पर और लगभग 70 भाग मूल्य के आधार पर समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासनिक नियंत्रण पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पास है, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों व राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। ये बंदरगाह कच्चे तेल, कोयला, कंटेनर, उर्वरक और कृषि उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के माल का संचालन करते हैं, जिससे बंदरगाह और शिपिंग देश की लॉजिस्टिक प्रणाली के केंद्र में है। इस योजना के तहत MOPSW 5 स्तंभों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय का विकास और तटीय पोत परिवहन व अंतर्देशीय जल परिवहन। सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों पर क्षमता बढ़ाने, कामकाज की दक्षता में सुधार करने और जहाजों के आने जाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमता बढ़ाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें नए बर्थ और टर्मिनल बनाना, मौजूदा बर्थ और टर्मिनल का यंत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण और अनुकूलन करना, बड़े जहाजों के लिए पानी की गहराई को और गहरा करने के लिए कैपिटल रेजिंग, सड़क और रेल संपर्क का विकास और पार्किंग प्लाजा जैसी सहायक सुविधाएं बनाना शामिल है। इसके अलावा कामकाज की दक्षता बढ़ाने और जहाज़ों के टर्न अराउंड समय को कम करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस लागू करके बंदरगाह की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। इन पहलों के नतीजतन प्रमुख और अन्य बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2013-14 में लगभग 1,400 MTPA से बढ़कर मार्च 2026 तक 2,818 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। सागरमाला कार्यक्रम का एक मकसद बेहतर बंदरगाह संपर्क सुविधा और बंदरगाहों व उनके आसपास के इलाकों के बीच सामान की कुशल आवाजाही के जरिए कुल रसद लागत को कम करना भी है। सागरमाला परियोजना में बंदरगाह संपर्क सुविधा का एक खास हिस्सा है, जो सड़क, रेल और आंतरिक जलमार्गों के जरिए बंदरगाहों के अंतिम छोर और तुरंत आसपास के इलाकों से संपर्क पर ध्यान देता है। इसके अलावा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बंदरगाहों तक संपर्क का व्यापार आंकलन किया है और 2022 में एक समग्र बंदरगाह संपर्क योजना तैयार की है। इसमें चालू बंदरगाहों से संपर्क की समीक्षा की गई और उन बंदरगाहों की पहचान की गई जिन्हें पास के आर्थिक केंद्रों के साथ सड़क संपर्क से सुधार की जरूरत थी। इसके बाद MOPSW ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कुल 294 रेल और सड़क संपर्क प्रोजेक्ट्स की पहचान की है। इनमें से 84 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, 66 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और कुल 144 प्रोजेक्ट्स अभी योजना के चरण में हैं। बंदरगाह की सीमा के अंदर संपर्क प्रोजेक्ट्स का काम पोर्ट प्राधिकारी करते हैं और पोर्ट की सीमा के बाहर के प्रोजेक्ट्स का काम रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या राज्य सरकारी करती हैं। पिछले 11 वर्षों में सागरमाला कार्यक्रम ने ठोस और मापनीय परिणाम दिए हैं। समग्र प्रगति इसके पैमाने और समुद्री अवसंरचना विकास पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 845 परियोजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 6.06 लाख करोड़ रुपए हैं, 24 मार्च 2026 तक 1.57 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 315 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 210 परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं और 320 परियोजनाएं योजना चरण में हैं। इन पहलों के माध्यम से बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने, कनेक्टिविटी में सुधार करने और तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सतत प्रगति हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पत्तन

0: परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेट निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सागरमाला परियोजना और द्वीप विकास रणनीति के तहत सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप में एक मेगा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास है। रणनीतिक महत्व या टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के बेहद करीब स्थित है। इसके विकसित होने से भारत की वैश्विक समुद्री व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ेगी और रसद निर्भरता कम होगी। यह परियोजना पूर्ण होने के बाद वर्ष 2040 तक सालाना 30,000 करोड़ का राजस्व उत्पन्न कर सकती है और लगभग 50,000 नौकरियां पैदा करेंगी। सागरमाला योजना के मुख्य स्तंभों में से एक द्वीप विकास और तटीय जहाजरानी एवं अंतर्देशीय जल परिवहन है। इसके तहत अंडमान के विभिन्न द्वीपों के बीच संपर्क सुधारने के लिए निवेश किया जा रहा है। द्वीपों पर नए जेट्टी, यात्री टर्मिनल और जहाजों की मरम्मत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। रो पैक्स फेरी सेवाएं दूर दराज के द्वीपों को मुख्य भूमि और एक दूसरे से जोड़ने के लिए आधुनिक रो पैक्स और यात्री नौका सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय समुदायों और पर्यटन दोनों को सीधा लाभ मिल रहा है। सागरमाला के तहत देश भर में चिन्हित नए बंदरगाह विकास की परियोजनाओं में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मैरीटाइम बोर्ड और प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जा रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कुल 845 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 6.06 लाख करोड़ रुपए हैं। इनमें से 315 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी नियोजन और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सागरमाला 2.0 मार्च 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में प्रस्तावित है, जो इसकी उपलब्धियों पर आधारित है और मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 तथा समुद्री अमृतकाल विजन 2047 में उल्लेखित समुद्री क्षेत्र की व्यापक एवं एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टि को अपनाता है। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों के व्यापक आधुनिकीकरण, बंदरगाह प्रेरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, बंदरगाहों से तटीय और हिंटरलैंड कनेक्टिविटी में सुधार, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, द्वीपीय और तटीय समुदाय के विकास तथा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए भारत को वैश्विक समुद्री हब के रूप में स्थापित करना है। सागरमाला 2.0 को समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और लॉजिस्टिक लागत में कमी का एक प्रमुख सक्षम कारक भी माना गया है, जो विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप है। प्रस्तावित योजना के तहत 85,482 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता और 3.06 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसे बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं तटीय अवसंरचना, समुद्री सेवाओं, तटीय विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित पहचानी गई पहलों पर योजना अवधि के दौरान व्यय किया जाएगा। पिछले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र में क्षमता, कनेक्टिविटी और परिचालन दक्षता के संदर्भ में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सागरमाला कार्यक्रम ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, तटीय एवं अंतर्देशीय जलमार्ग, अवसंरचना के विकास और कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूर्ण हुई परियोजनाओं ने अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है, पोत टर्न अराउंड समय को कम किया है और बंदरगाह प्रेरित औद्योगिक विकास तथा तटीय समुदाय विकास को समर्थन दिया है। सामूहिक रूप से ये पहल व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भारत की समुद्री अवसंरचना को मजबूत और टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है।
1: श्रोताओं, अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 6:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। समीर के शब्दों को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने रास फिल्म के लिए। चलिए सुनते हैं ये गीत अलका याग्निक व अभिजीत की स्वरों में।

श्रोताओं, अब सुनिए कसूर फिल्म से अगला गीत। इस गीत के संगीतकार हैं नदीम श्रवण, बोल है समीर के और गायक कलाकार हैं अलका याग्निक व कुमार सानू।

श्रोताओं, पेश है फिल्म दिल है तुम्हारा का गीत अलका याग्निक व कुमार सानू के आवाज़ों में। इस गीत की रचना की है समीर ने और संगति है नदीम श्रवण की।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम के तहत डॉक्टर कमल शर्मा से की गई बातचीत का विषय रहेगा मछली पालन तालाबों का निर्माण, जो कि आप सुन पाएंगे शाम 6 बजे। समाचार तरंगनी प्रसारित किया जाएगा शाम के 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का वक्त रहेगा 7:20। 7:30 युवानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम। 8 बजे आप सुन पाएंगे जापान में खेले जाने वाले 20वें एशियाई खेलों पर पूर्वलोकन कार्यक्रम, जो कि हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:30 पर आप सुन पाएंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स होगा, जो हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे कल के कुछ शेष कार्यक्रम। अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रापत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

मीडियम वेव 438.0 अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे

मुख्य समाचार। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर वडनगर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत। भगवान विश्वकर्मा से श्रमिक वर्ग की समृद्धि की कामना करते हुए द्वीप समूह के सरकारी कार्यालयों में भव्य पूजा समारोह आयोजित किए गए। और दक्षिण अंडमान में विमरलीगंज, फ्रारगंज और शोलबे पंचायत सहित कई क्षेत्रों में 19 सितंबर को बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग हब की जरूरत है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है, जिसे देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की रेटिंग में सुधार किया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का बजट 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 13.5 अरब डॉलर कर दिया है। अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी संख्या आगे और बढ़ाई जाएगी। पीएम ने जोर दिया कि एआई के इस दौर में भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र नवाचार, निवेश और विकास के नए रास्ते खोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर गुजरात के वडनगर से महीने भर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर से वाराणसी के लिए एक बाइक रैली को रवाना किया। इसके साथ ही देशभर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 की शुरुआत हुई, जिसकी थीम स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत है। यह अभियान सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, सफाई मित्र सुरक्षा और कचरा पृथकीकरण जैसे 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी शैक्षिक श्रमदान का आयोजन होगा। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायबंदर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हुई, जहां प्राचार्य डॉ आरवीआर मूर्ति ने स्वयं सेवकों को श्रम की गरिमा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम के तहत एनएसएस स्वयंसेवकों ने कर्माटांग गांव का दौरा कर ग्रामीणों को मिठाइयां बांटी और धान की खेती में सहयोग देकर श्रमदान किया। इसके साथ ही समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक व कचरा एकत्र किया और तटीय पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ कांडीमुत्ती के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ सत्यप्रकाश, डॉक्टर असरुद्दीन सहाजी और प्रशांत कंदुलना सहित अन्य शिक्षकों एवं स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजधानी श्री विजयपुरम में 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुद्रेश प्रसाद और न्यायाधीश प्रसन्नजीत विश्वास विभिन्न मामलों की सुनवाई करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।

हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, विश्वकर्मा पूजा और बिजली। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जयदीप कुमार डे ने BMS का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद AG गणेशन और भवन निवासी तिरुना वुकुरासु को सम्मानित किया गया तथा श्रमिक वर्ग की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में महासचिव S. बीजू पिल्लय, वित्त सचिव A. विजय नायर और BMS के पूर्व राज्य अध्यक्ष M. वीरन्ना समेत कई सदस्य मौजूद रहे। उधर कैम्बलबे के बिजली APWD, STS और वन विभाग में भी सुबह से शाम तक विधि विधान से पूजा व शस्त्र पूजन हुआ। समापन पर कर्मचारियों व स्थानीय नागरिकों को प्रसाद और भोजन वितरित किया गया। दक्षिण अंडमान के विभिन्न क्षेत्रों में 19 सितंबर को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विंबरलीगंज साइट ऑफिस के पास ST लाइन की सफाई, पेड़ों की कटाई तथा खराब LTA BC तारों को बदलने का मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। इस दौरान डैम कड़ाकचान 2, मॉडल विलेज, कमसरंत, कड़ाकचांग, पहाड़ बगीचा, मनारघाट, मलापुरम और राइटम्यो सहित शोलबे पंचायत का पूरा क्षेत्र प्रभावित रहेगा। इसके अलावा फ्रायरगंज साइट ऑफिस और कन्यापुरम में भी बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि निर्धारित मरम्मत कार्य मौसम की अनुकूल परिस्थितियों में ही किया जाएगा। यदि कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाता है तो बिजली आपूर्ति भी समय से पहले बहाल कर दी जाएगी। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य विभाग ने बताया है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2027 की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा भाग ले सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में राष्ट्रीय योजनाओं और पहलों, नई तकनीक, इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, नागरिक अधिकारों और संविधान के मूल्यों, विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक, खेल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत से जुड़े अन्य विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने से युवाओं के ज्ञान और देश के प्रति उनकी समझ बढ़ाने के साथ साथ उनमें नई चीजें जानने की रुचि भी बढ़ेगी। प्रश्नोत्तरी पूरा करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रश्नोत्तरी में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर निबंध लेखन और प्रस्तुति प्रतियोगिताएं होंगी। राज्य स्तर पर विजेता युवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इच्छुक युवा माई भारत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। श्री विजयपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कल विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉक्टर के सिल्बरासन ने ओजोन परत के महत्व और इसके संरक्षण पर जानकारी दी। वहीं EIACP की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रोमिला ने ओजोन सरण, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल और पर्यावरण संरक्षण में 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के महत्व पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास ने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन पर्यावरण को स्वच्छ और हरित रखने की शपथ के साथ हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर वडनगर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत। भगवान विश्वकर्मा से श्रमिक वर्ग की

समृद्धि की कामना करते हुए द्वीप समूह के सरकारी कार्यालयों में भव्य पूजा समारोह आयोजित किए गए और दक्षिण अंडमान में विमरलीगंज, फ्रारगंज और शोलबे पंचायत सहित कई क्षेत्रों में 19 सितंबर को बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान तथा द्वीप निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में भारी वर्षा तथा कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने व बिजली गिरने की संभावना है। वहीं मछुआरों को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को 20 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में भारी वर्षा और कुछ स्थानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी कल मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी दूसरे दिन यानी 19 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कैमल बे कल 18 तारीख को रात 9 बजे लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान दूसरे दिन 19 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6 बजे लॉन्ग आइलैंड व स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की ओर प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान कल ही 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय कल यानी 18 तारीख को सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटकर शहीद द्वीप के लिए चलेगा और कल ही दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप की ओर प्रस्थान करेगा और जलयान उसी दिन दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत कल सुबह 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप को जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप की ओर रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा।

एमवी रानीचंगा कल शाम 5 बजे स्वराज दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी दूसरे दिन यानी 19 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज दीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा।

अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। पहले सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में चाइना गेट फिल्म का गीत, जिसके संगीत निर्देशक हैं अनु मलिक और बोल है समीर के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म दिल का क्या कसूर से अलका याग्निक व कुमार सानू के स्वरों में। इस गीत के शब्दकार हैं अनवर सागर और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:33 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवानी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 17 सितंबर है और आज हम मना रहे हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान रोगियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर जोर देना है। रोगी सुरक्षा का अर्थ केवल बीमारी का इलाज करना ही नहीं, बल्कि इलाज की पूरी प्रक्रिया में मरीज को किसी भी अनावश्यक नुकसान से बचाना भी है। सही मरीज की पहचान, सही दवा और सही मात्रा देना, संक्रमण से बचाव, स्वच्छता बनाए रखना तथा डॉक्टर और मरीज के बीच बेहतर संवाद, ये भी रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मरीज

और उनके परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मरीज को अपनी बीमारी, दवाओं और एलर्जी से संबंधित सही जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को देनी चाहिए और उपचार संबंधी निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा हर मरीज का अधिकार है। एक सुरक्षित और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था ही स्वस्थ समाज की मजबूत नींव बन सकती है।

0: तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतज़ार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज इस माह का तीसरा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में अनेक कलाकार आए और अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने अभिनय की गहराई और संवेदनशीलता के कारण एक अलग पहचान बना लेते हैं। शबाना आज़मी भी भारतीय सिनेमा की ऐसी ही सशक्त और बहुमुखी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को इतनी सहजता और सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि वह केवल एक भूमिका नहीं रही, बल्कि दर्शकों के लिए एक जीवंत अनुभव बन गया। गंभीर और अर्थपूर्ण सिनेमा से लेकर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं तक, शबाना आज़मी ने अपने शानदार अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं सबीना बानू द्वारा यह वार्ता, बेहतरीन अभिनेत्री शबाना आज़मी।

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनके अभिनय की गहराई और संवेदनशीलता से बनती है। ऐसी ही एक अद्भुत अभिनेत्री है शबाना आजमी। उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित किया कि एक कलाकार की असली पहचान केवल पर्दे पर दिखाई देने वाली लोकप्रियता नहीं बल्कि अपने किरदार को पूरी सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ जीने में होती है। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ। उनका संबंध एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और कलात्मक परिवार से था। उनके पिता प्रसिद्ध शायर और लेखक कैफी आजमी थे। उनकी मां शौकत कैफी रंगमंच की जानी मानी कलाकार थी। कला और साहित्य से जुड़े वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को बचपन से ही प्रभावित किया। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बाद में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। शबाना आजमी ने 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह वह दौर था जब भारतीय सिनेमा में समानांतर या अर्थपूर्ण सिनेमा एक नई पहचान बना रहा था। उनकी शुरुआती फिल्म में अंकुर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने लक्ष्मी नाम की ग्रामीण महिला का किरदार निभाया। यह भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि शबाना आजमी को अपने पहले ही प्रमुख अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसमें महिलाओं के जीवन, संघर्ष, भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया। शबाना आजमी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उनकी अभिनय क्षमता की विविधता। चाहे अर्थ में आत्मसम्मान और भावनात्मक संघर्ष से जूझती महिला हो, फायर में सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष करने वाला किरदार हो, या मासूम और स्पर्श जैसी फिल्मों में संवेदनशील भूमिकाएं, उन्होंने हर चरित्र को अलग पहचान दी। उनके अभिनय में बनावटीपन कम और वास्तविकता अधिक दिखाई देती थी। चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, संवाद बोलने का अंदाज और मौन के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता उन्हें विशिष्ट बनाती थी। शबाना आजमी भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने अपने शानदार अभिनय के लिए 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार, गॉड मदर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। यह उपलब्धि उनके अभिनय का निरंतर और विविधता का प्रमाण है। शबाना आजमी ने केवल गंभीर और समानांतर फिल्मों तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, उन्होंने मुख्य धारा की फिल्मों में भी यादगार भूमिका निभाई। इस तरह उन्होंने यह दिखाया कि एक सशक्त अभिनेत्री अलग अलग तरह के सिनेमा में अपनी प्रतिभा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी दिखाई देते थे। यही कारण है कि वे दर्शकों के साथ साथ आलोचकों के बीच भी लंबे समय से सम्मानित रही हैं। शबाना आजमी का जुड़ाव केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। एक कलाकार के रूप में उन्होंने महिलाओं, समानता और सामाजिक न्याय जैसी विषयों को भी अपनी आवाज दी। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि लोकप्रियता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। शबाना आजमी की यात्रा केवल एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं या उस कलाकार की कहानी है जिसने अपने काम को गंभीरता से लिया और हर किरदार के साथ न्याय करने का प्रयास किया। उन्होंने यह साबित किया कि अभिनय केवल संवाद बोलना या कैमरे के सामने भाव व्यक्त करना नहीं, अभिनय किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और जीवन को समझकर उसे पर्दे पर सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने की कला है। भारतीय सिनेमा में शबाना आजमी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और संवेदनशील अभिनय से कई पीढ़ियों के दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी फिल्मों के किरदार आज भी इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उनमें हमें वास्तविक जीवन की भावना और संघर्ष दिखाई देते हैं। शबाना आजमी केवल

एक बेहतरीन अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के उन सशक्त कलाकारों में से हैं जिन्होंने अभिनय को एक गंभीर और प्रभावशाली कला के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कला के लिए यही कहा जा सकता है, कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं और कुछ कलाकार अपनी अभिनय से किरदार को अमर कर देते हैं। शबाना आज़मी उन्हीं कलाकारों में से एक है।

बेहतरीन अभिनेत्री शबाना आज़मी। दोस्तों, अभी आप सबीना बानू द्वारा यह वार्ता सुन रहे थे।

0: दोस्तों हम आपको बता दें, ये गीत हमने लिया है 1983 में आई शबाना आजमी की फिल्म मासूम से, और इस गाने को आवाज दी है मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी ने।
1: नमस्कार, आदाब साथियों, मैं हूं नवीन कुमार पांडे। युवाणी के इस रंगीन सफर में आज अपनी

आवाज अपनी वाणी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए इसका आगाज करता हूँ कबीर जी के पवित्र दोहे के साथ, जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता हूँ अपने पेशे की ओर। हालांकि यह मेरा पेशा नहीं है, पर पेशेवर कहलाता हूँ। जी हाँ साथियों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है पेशे से कवि तो नहीं। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ, पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। नाम नवीन है तो क्या, नाम नवीन है तो क्या, अतीत का शौक रखता हूँ। हवाओं में लहराता हूँ बादलों की सैर करता हूँ, हवाओं में लहराता हूँ बादलों की सैर करता हूँ। फिजाओं की है चाहत मुझमें, फिजाओं की है चाहत मुझमें, हर पल है मेरा मेरी खुशनसीबी ढूंढता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। उगते हुए सूरज की सगाई में, उगते हुए सूरज की सगाई में आशा की शहनाई सुनता हूँ, उगते हुए सूरज की सगाई में आशा की शहनाई सुनता हूँ। डूबते हुए सूरज की विदाई में, डूबते हुए सूरज की विदाई में बाबुल की दुहाई सुनता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। आज हूँ आपके बीच, आज हूँ आपके बीच, कल कहीं और फिरता हूँ मंजिल की साहिल की लालच में। आज हूँ आपके बीच, कल कहीं और फिरता हूँ मंजिल की साहिल की लालच में। कश्तियों से सिफारिश करता हूँ, कश्तियों से सिफारिश करता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। अंधेर नगरी की माया जाल में, अंधेर नगरी की माया जाल में दिए रोशनी की पूजा करता हूँ, अंधेर नगरी की माया जाल में दिए रोशनी की पूजा करता हूँ। खो जाने का डर कैसा, खो जाने का डर कैसा, हाथों में लकीरें रखता हूँ। पेशे से कवि तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। जिस किसी से मिलता हूँ, जिस किसी से मिलता हूँ रिश्तों की नींव रखता हूँ, जिस किसी से मिलता हूँ रिश्तों की नींव रखता हूँ, जिस किसी से मिलता हूँ रिश्तों की नींव रखता हूँ, जिस किसी से मिलता हूँ रिश्तों की नींव रखता हूँ। कल वो कर सकते हैं याद मुझको, कल वो कर सकते हैं याद मुझको, पागलों की इज्जत करता हूँ, पागलों की इज्जत करता हूँ, पागलों की इज्जत करता हूँ। पेशे से कभी तो नहीं पर कविताएं ज़रूर लिखता हूँ। नाम नवीन है तो क्या, अतीत का शौक रखता हूँ, अतीत का शौक रखता हूँ, अतीत का शौक रखता हूँ। साथियों, मेरे पेशे से तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे, तो चलिए एक और सोच, एक कल्पना, एक खूबसूरती का वर्णन करता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब पहली बार चेन्नई से अंडमान के हवाई अड्डे पर उतरा तो यहाँ की फिजाओं से मुझे मोहब्बत हो गई। पता है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मोहब्बत करने वाले को उसकी माशूका का दीदार हो गया हो। और हाँ साथियों, वो मजनू जिसे अपनी सरजमी, अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत हो गई थी, वो मैं ही था। और अंडमान के हुस्न के जादू तो पूरे विश्व में चलता है, बस हम खुशनसीब हैं अंडमानवासी जो रोज़ इसका दीदार करते हैं। तो साथियों, मेरी इस कविता का शीर्षक है अंडमान तेरी हुस्न का दीदार। कसम है कुदरत के नूर की, कसम है कुदरत के नूर की, उसके चमत्कार उसके हूर की, ना देखा है हुस्न का जादू ऐसा। कसम है कुदरत के नूर की, उसके चमत्कार उसके हूर की, ना देखा है हुस्न का जादू ऐसा। मेरे मौला, मेरे अंडमान, मेरे यार की, तेरी आँखों के समंदर में, तेरी आँखों के समंदर में अजब सी गहराई नजर आई जब चाह कर डूबने लगा मैं। तेरी आँखों के समंदर में अजब सी गहराई नजर आई जब चाह कर डूबने लगा मैं, तो मेरी ही तस्वीर नजर आई, मेरी ही तस्वीर नजर आई। ख्यालों में गुम होकर बेकरार, ख्यालों में गुम होकर बेकरार, करती हो किसका इंतजार। ख्यालों में गुम होकर बेकरार, करती हो किसका इंतजार। जानता हूँ मैं ही हूँ, जानता हूँ मैं ही हूँ, पर नहीं एतबार, कभी तो करो अपने प्यार का इजहार। जानता हूँ मैं ही हूँ पर नहीं एतबार, कभी तो करो अपने प्यार का इजहार, अपने प्यार का इजहार। बस साथियों, कहीं से यह पता चल जाए कि अंडमान को भी मुझसे प्यार है तो बस हमारी बात बन जाएगी। आते जाते हैं दूर दूर से, आते जाते हैं दूर दूर से, करते हैं तुलना तेरी कोहिनूर से। आते जाते हैं दूर दूर से, करते हैं तुलना तेरी कोहिनूर से। उनके शब्द कम है ना करना एतबार, उनके उनके शब्द कम है ना करना एतबार, हम तो करते हैं तेरा बार बार दीदार।

0: हम तो करते हैं तेरा बार बार दीदार, हम तो करते हैं तेरा बार बार दीदार। साथियों, ये तो मेरा प्रेम है मेरे अंडमान के लिए। क्या आपको अपने अंडमान से मोहब्बत है? अगली मुलाकात में ज़रूर पूछूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वरचित कविताएं नवीन कुमार पांडे द्वारा।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनने पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
5: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉप्लर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉप्लर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। यह कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। परिचितों को पैसे भेजने पर दुकानदारों के निजी खाते में भुगतान करने या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 109 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाले के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल

0: एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर उसके बारे में बताएं।
1: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स का एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का एक्लमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहाँ जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे हैं।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
1: देखिए, अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से। उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आइची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंदकर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि

0: आर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोल कीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं, विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया। क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पर रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। वुमेन्स टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेन्स टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफ़ी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफ़ी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
0: फोर्थ प्लेस फिनिश
2: जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम 5वें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20, 21, 22 साल की 11 लड़कियां। तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा।

0: जी
1: सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पे इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
0: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह ही भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पे, जैसा आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
0: सायंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें, किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद WF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हांजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोराल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में, और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। डेफिनेटली तो चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज़ भी हम देखने को मिल सकता है, तो देट

0: ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजी नगोया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
2: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली। महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
0: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मोना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की

0: नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
1: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफ़ी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको। गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था। कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया है कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में। तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चौताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं। तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चौताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
0: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। जी हां, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना आप?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है। और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
0: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
1: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे। क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते, ये एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं, और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
0: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
1: थैंक यू सो मच।
0: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

चयनित अभ्यर्थियों को 2.5 लाख प्रतिमाह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रेज्यूम 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रेज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रेज्यूम ad.pmb@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुआ। अब सुनिए गौरवगान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: दी अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा

0: है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
3: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री

0: जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर

0: देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चीप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved. Semiconductor Mission Semicon 2.0.
3: The investment numbers that we are seeing today is of the order of 1 lakh crore, about $11 to $12 billion. That much investment we are seeing among the people who have met us. Many of them don't want us to take the names, so we won't take the names. They will announce the investments as their boards and their shareholders authorize them from time to time. So that kind of journey is very clearly ahead of us.
1: The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop future-ready talent. The government has refuted allegations that the merchant discount rate MDR on UPI has been introduced because of external pressure. Department of Financial Services in Ministry of Finance said the allegation is patently false and misleading. It said that the introduction of MDR on select high-value transactions will enable more domestic companies to operate under UPI. The department said the action of introduction of MDR is a step in protecting India.

0: आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, अ रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रोहन राज टर्म द माई गॉव प्लेटफॉर्म एज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर शेयरिंग फीडबैक एंड सजेशन इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज।
2: थ्रू माई जीओवी पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
1: बाई जुलाई 2026 नियरली 6.5 करोड़ सिटीजन्स हैड रजिस्टर्ड ऑन द माई गॉव प्लेटफॉर्म। आनंद कुमार, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
3: Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards the goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal during the release of the installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
4: अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई है। सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे
3: इंडिया इज लीडिंग 3-match series 2-0 आफ्टर कन्विंसिंग विंस इन द फर्स्ट 2 matches। एंड नाउ बिफोर वी एंड द बुलेटिन द हेडलाइंस वंस अगेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोजिशंस इंडिया एज ग्लोबली रिलायबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। Amid weaponization of supply chains, 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as the US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And that's all in the news at 9. Good night.

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा, इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: ये अच्छी बात है कि इस साल फिर एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारे आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेके अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले ऐसा कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा। और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा, और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 पक्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था। अभी इस बार 1 महीना है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता की है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ोगे तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा, ऐसे ही एक अंदर में इंसान और

0: सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके। ये एक महीना खास करके आज से लेके, तो ये स्वच्छता ही सेवा अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे, मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है, जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का, सारे घरों की कचरा जो है रोज आते हैं, गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है। बाहर जो कूड़े का, शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता ही सेवा की जो एक महीना है, ये लोगों की कार्यक्रम, इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे, वही चल रहा है और 2017 से शुरू हुआ था, बहुत सफल रहा है। इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं, और भी होता है तरह तरह के समय में, कभी एक हफ्ता, कभी 2 दिन, कभी कोई एक फंक्शन है, सेरेमनी है या कोई ओकेजन है, उसमें भी होता है। और से बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है, और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो दो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है, उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं, सब जुड़ते हैं
1: जी,
0: और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
1: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है, और जागरूकता को सारी जनता आम तौर पे खुद से अपनाए, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
0: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज में माने, जैसे कि 14 से 19 पहला फेज था, और 19 से 26 जो है इस साल तक दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का। पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था उस टाइम। मैं सोचता हूँ कि फेज 2 जो खत्म होने वाला है और फेज 3 जो आने वाला है, ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था उस टाइम, गांव गांव शहर शहर लहर जैसा चल पड़ा था उस टाइम। लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त करना है, वो फोकस था उसमें, खुले शौच से मुक्त, जो ओपन डिफेकेशन फ्री बोलते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा, 2014 में भारत में खुले में शौच करने वाली लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ 600 मिलियन था, और वो दुनिया के सारे खुले शौच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा, और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था। लेकिन 2014 से लेके 19 के अंदर देश खुले में शौच मुक्त हुआ, इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है। और इसमें 4 P बोला जाता है, 4 P। पहला P है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को, जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे गवर्नर, सारे MP, MLA और जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा P है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा, ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का, कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है, उसमें कॉरपोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी भी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा, लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन जो आखिरी P जिसका की जिक्र आपने अभी किया, वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता ही सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहां गंदगी है, उसको सब मिलकर साफ करेंगे, साफ नहीं तो माफ नहीं। बात है निपटान वेस्ट का, हाँ,
1: कचरा
0: सॉलिड
1: प्रबंधन
0: एंड
1: की बात
0: लिक्विड
1: है
0: वेस्ट
1: जी।
0: का निपटान की बात हो रहा है, और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गांव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का एक रखा गया है टारगेट, 4800 5000 करीब हमारा शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा, लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना भी जुड़ नहीं पाए हैं। और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोक्योरमेंट, वेस्ट रिकवरी हुआ, वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ, निपटान करना हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी आते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज 1 में, ये जुड़ाव का और एक

0: बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है. ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया, खुले शौच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जोड़ जाता है कि क्या गांव में कचरे का निपटान हुआ है, क्या गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है. अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू उससे जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, तो उससे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है. ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है. लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर्स हैं, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचरे जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है. नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर वो बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल, ये सब का आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है.
1: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर पर नहीं, ऑफिस स्तर पर भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है. तो ई कचरा प्रबंधन, बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जो कार्यालय हैं, उसमें भी जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने की बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में?
0: बिल्कुल, आप देखिए ना, इलेक्शन में, मैं इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था, और इलेक्शन में जब बैलेट को निकालकर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ. और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच काटने का और कचरा, ये सबसे रिहायत मिलता है. तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है, मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री लेके, कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा. जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोगों का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है, और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते रहते हैं. जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया, ठीक जगह में जाके उसको, एक चैनल है जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर जगह, ये खाली कचरे में डाल देने से नहीं होगा, इसको निकाल के इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो पूरा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें. और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का. एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है, सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये RRR, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, 3R, RRR, 3R. मतलब आप चीजों के, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अपना जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना. तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस, लेकिन आज को मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद, और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने का मैं तो ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि देख नहीं रहा है. रीयूज रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कोई चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके, उसका मिसाल बहुत है, जो जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं ये रीयूज रिसाइकल का. हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है. तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मेटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारा घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस, जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें. आपने शायद सुना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
1: जी,
0: आप जो कंज्यूम करें, तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में, क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए या और भी खरीदते रहिए, तो फिर तो कचरों जाएगा कहाँ, कचरे तो रहेगा ना वहाँ, फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है, वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए, ये अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है.
1: अच्छा, जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा, 1 दिन, 1 साथ देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान की बात है. हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल भी बने हैं, वहां पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करी. और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है. आप देखिएगा, अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
0: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, कई बार रिकॉर्ड्स बने हैं, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे. लेकिन एक सोच आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था देश में, जितना बड़े बड़े जगह है, जैसे तीर्थ और या

0: रमण की जगह जो है टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में क्योंकि फुटफॉल आपने जैसे अभी कहा फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है। लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से जैसे सरकार या एजेंसीज की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ का देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था, उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का, जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा उसका कैसे बंदोबस्त है, वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या और तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
1: आज भी जो विभिन्न कार्यालय हैं, आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी यहाँ पे भी स्वच्छता, सभी कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इसके बारे में।
0: एक प्रण है, जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा, हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचड़े को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को घर में सबको अपने अपने सफाई का आदत समाज में सिखाया जाएगा,
1: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: We have 3 days conference also. All aspects of semiconductors, right from design, manufacturing of all kind, logic fab, display, all kind of package, advanced packaging, different packaging. Then sessions on equipment manufacturing, sessions on chemical gases and materials, sessions on international collaboration. There's a very powerful session on women empowerment also. So we are discussing women leaders in semiconductor industry. I will try to provide inspiration to the girls who are studying in the colleges to take a subject which will contribute to semiconductor industry. So that is also there. And with your channel, I request all girl students to watch that show. That will come up on 18th September in the evening. So there are many things to see and learn. So I request all of them to visit if they are in Delhi or nearby area. Otherwise, sessions will be webcast, will be there, and they will be able to see all those things through their computer also.
1: Thank you so much, Mr. Sinha, for taking out time and speaking to Akashvani on a busy day. Thank you for joining us for this program tonight.
0: Thank you so much for having me.
2: You were listening to an exclusive interview with Amitesh Sinha, CEO, India Semiconductor Mission, on building India's semiconductor ecosystem. The interviewer was Diksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Insights.
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए रेडियो रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान का यूटी स्तरीय शुभारंभ आज श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद राय, मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव, दक्षिण अंडमान उपायुक्त, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। स्वागत संबोधन के बाद मुख्य सचिव और सांसद ने स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला।
5: जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, अंडमान निकोबार द्वीपों में प्लास्टिक का पन्नी था, बैग था, प्लास्टिक बैग, बाजार जाओ मच्छी लाओ सब्जी लाओ प्लास्टिक पन्नी था। अपना घर में मच्छी रखो सब्जी रखो पन्नी को फेंक दो, रास्ते में उठते उठते कहाँ जाएगा मालूम किसी को नहीं था, नाला में आएगा रास्ते में आएगा, ये चलता रहा। गांधी का सपना को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने स्वच्छता शपथ शुरू किया। आज अंडमान निकोबार द्वीपों में प्लास्टिक पंडी भी नहीं, प्लास्टिक बैग भी नहीं, आप सब नेचुरल में आ गया। स्वच्छता में हमारा बहुत सा काम हुआ भी है, हो रहा भी है, आगे और भी होगा। मेरा एक अनुरोध है उपराज्यपाल महोदय के पास, आज से बहुत साल पहले द्वीप समूह में पीडब्ल्यूडी का प्लान में था, सरकार का प्लान में था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 95 भी हुआ था कहाँ कहाँ बनना, ताकि वार्ड में म्यूनिसिपल वार्ड में गंदा पानी समुद्र में ना जाए, गंदा पानी समुद्र में ना आए। उसके लिए स्कीम बना, पैकेज बना, 95 भी हुआ। उस काम को जल्दी अंडमान हो, ये उपराज्यपाल महोदय से मेरा प्रार्थना है।

0: और एक बात तो खूबी है द्वीप समूहों का कि सारा टूरिस्ट आते भारत से बाहर से, अंडमान का खूबसूरती बहुत अच्छा है, आगे और भी कुछ करना है छत्तीसगढ़ के ऊपर। इस बारे में मैं आगे नहीं कहूँगा, हमारा बीच में विद्वान व्यक्ति आए हैं, उन्होंने देखा, कॉरपोरेशन देखा, हम लोग को छोटा म्यूनसिपल काउंसिल उन्होंने देखना शुरू कर दिया, उनका मुंह से सुनेंगे अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। स्वच्छता शपथ के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मोदी का सपना पूरा करने के लिए हम सब लगेंगे, उपराज्यपाल का आदेश पर। इतना मुझे कहना था, जय हिंद, भारत माता की जय।
1: इसके उपरांत माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित अंडमान निकोबार के निर्माण के लिए सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।
2: महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था,
3: उसमें सिर्फ
2: राजनीतिक आजादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
3: महात्मा गांधी ने
2: गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को
3: आजाद कराया।
2: अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माँ की सेवा करे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं
3: स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी
2: और उसके लिए समय दूंगी हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे
3: श्रमदान करके
2: स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगी ना किसी और को करने दूंगी सबसे पहले मैं स्वयं से
3: मेरे परिवार से
2: मेरे मोहल्ले से
3: मेरे गांव से
2: एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यह मानता हूं कि
3: दुनिया के जो भी देश
2: स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि
3: वहां के नागरिक
2: गंदगी नहीं करते
3: और ना ही होने देते हैं।
2: इस विचार के साथ
3: मैं गांव-गांव
2: और गली-गली
3: स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी।
2: मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊंगी।
3: वे भी
2: मेरी तरह
3: स्वच्छता के लिए
2: सौ घंटे दें
3: इसके लिए
2: प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को

0: गली गली
1: और गली गली
0: स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
1: स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं
0: आज जो शपथ ले रहा हूं,
1: आज जो शपथ ले रही हूं,
0: वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
1: वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी।
0: वे भी
1: मेरी तरह
0: स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें।
1: इसके लिए
0: प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। भारत माता की जय।
2: शपथ ग्रहण के बाद माननीय उपराज्यपाल ने सभा को संबोधित किया।
0: भ्रष्टाचार मुक्त अंडमान निकोबार बन सके, ये शायद आज की जयंती का सबसे बड़ा संकल्प है। और इस संकल्प के साथ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, मैं तो कह रहा था कि बीबीए है तो एमबीए क्यों नहीं है, और एमबीए है या एमकॉम है तो पीएचडी क्यों नहीं है। कहने से तत्काल नहीं हो जाता, लेकिन मन में अगर कल्पना होती है ना, तो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं तो कहूंगा कि एक दिन नहीं, वो दिन आएगा और हम सब गर्व से कहेंगे कि हम अंडमान के निवासी हैं। अंडमान की जनसंख्या तेजी से गिर रही है, चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन जो हमारा प्रजनन दर है, TFR है, उसका संतुलन होना भी जरूरी होता है। रोजगार मिले लोगों को और रोजगार में अंडमान के लोगों को प्राथमिकता मिले, और रोजगार हो, भर्ती हो, सड़क का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, उसमें स्थायित्व, उसमें निष्पक्षता का भाव और बगैर दबाव के। दबाव की दुनिया अब अंडमान में नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस भी हम लोग हर्षोल्लास से, संकल्प के साथ पूरा देश मना रहा है, और आज हमने स्वच्छता की शपथ ली है। ये स्वच्छता की शपथ नहीं है, ये देश के निर्माण का संकल्प है। और जो स्वस्थ समाज है, स्वच्छता से स्वस्थता और स्वस्थता से एक सतत विकास की नींव का एक बनना, धारित होना, यही आज का संकल्प है। महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता अनुशासन और आत्मसम्मान का प्रतीक थी, और महात्मा गांधी जी ने पहले अपने घर की सफाई, अगर आपको जानकर ताजुब होगा, आजकल कितने फ्लश लेटरिन नहीं है, उसमें मलवा मल मूत्र को सर पर रख के लोग निकलते थे। उन्होंने घर की सफाई में सबसे पहले शौचालय अपनी धर्म पत्नी के द्वारा और अपना स्वयं ने मिलकर साफ किया। यानी जो स्वयं संकल्प लेता है वही सफल होता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प स्वच्छता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश से आने का मतलब है कि हमारे गोरखपुर में हजारों लोगों की मृत्यु होती थी हर साल, इंसेफ्लाइटिस से एक बीमारी होती थी, लेकिन इतनी दवा के बाद भी ठीक नहीं होता था। प्रधानमंत्री का जो चलाया हुआ अभियान था, स्वच्छता अभियान, उसमें एक तरीके से मच्छरों का और एक जो जीव जंतु खतरनाक थे, स्वच्छता के अभियान में उनसे मुक्ति मिली, और वहां उस बीमारी का जो दवा इलाज नहीं कर पाई, उस बीमारी का इलाज स्वच्छता ने किया। और मैं समझता हूं कि स्वच्छता से समृद्धि, और समृद्धि के बाद जब हम लोग 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाएंगे, तो सभी पर्यटन स्थलों का एक तरीके की स्वच्छता हो, उसमें नागरिकों की सहभागिता हो। और 2 अक्टूबर को जब हम एक यहाँ पर स्वच्छ भारत दिवस के रूप में एक पेड़ माँ के नाम, यानी हम पर्यावरण संतुलन की अभी कल्पना 2 अक्टूबर से प्रारंभ कर

0: और ये सामूहिक संकल्प रहेगी गंदगी ना करने ना होने देने का स्रोत, ये भारत की संपन्नता का आधार है। हम जानते हैं कि स्कूलों में जो स्वच्छता ज्ञान यात्रा है उसके द्वारा विद्यार्थियों में आरआरआर केंद्रों, पृथक्करण, कंपोस्टिंग इकाइयों का प्रत्यक्ष अनुभव देना और स्वच्छता एवं जल संचय संवाद, ये आज की आवश्यकता है। मुझे जब पता चला कि अंडमान में कभी कभी स्थिति ऐसी भी आती कि 6 दिन में 1 दिन का पानी देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तत्काल सब ठीक कर दूंगा, लेकिन आने वाली समस्याओं के बारे में प्रयत्न अपनी यथाशक्ति के माध्यम से करूंगा। और जब यथाशक्ति का प्रयत्न होता है तो ये मेरा सौभाग्य था कि जहां जहां मैंने काम किया और अगर यथाशक्ति से किया तो ईश्वर ने सबके सामूहिक प्रयत्नों से हमें सफलता दी है। तो आज के इस माध्यम से मैंने एक न केवल उद्बोधन के माध्यम से बल्कि मैंने अपना एक एजेंडा तय किया है, एक टीम वर्क के साथ हम काम करेंगे। मेरे साथ जाति की सीमा नहीं होगी, क्षेत्र की सीमा नहीं होगी, समुदाय या धर्म की सीमा नहीं होगी। हमारा एक धर्म है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के पालन के लिए अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी, अच्छे नागरिक, इन सब का जो सहयोग होगा वो निश्चित रूप में इस अंडमान निकोबार के भविष्य को सुधारने का एक बहुत बड़ा उपक्रम बनकर हमारे सामने आएगा। और मैंने इसीलिए सारे कल अधिकारियों की बैठक करी है और अधिकारियों की बैठक पे हमारा सबका संकल्प रहा है। मैंने एक एक विभाग का न केवल अध्ययन किया है बल्कि एक एक विभाग की कमियों को भी मैंने किया है। और मैं कह सकता हूं कि अध्यापक जो होता है उसको लोग पहले बोलते थे जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के बारे में लोग बोलते थे कि वो भिक्षाटन करके अपना काम करता है। मैं अंडमान निकोबार के लिए भिक्षाटन पर जाऊंगा, वो भिक्षाटन ये नहीं होगा, मैं विभिन्न भारत सरकार के विभागों के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे इक्विपमेंट को अच्छा करे, हमारे अस्पताल में यही पर सारी सुविधाएं हों, मैं जो शिपिंग कॉरपोरेशन है कि हमारा नया जहाज आ सके और यात्रियों की सुविधा शुरू हो जाए, उड्डयन मंत्रालय में जाऊंगा कि सस्ते दर पर जहाजों का आवागमन और ज्यादा संख्या में जहाजों का आवागमन सुनिश्चित हो सके। मैं मत्स्य विभाग के पास जाऊंगा कि हमारे मछुआरों के लिए एक व्यवसाय निर्यात का एक बड़ा माध्यम बन सके, उनके लिए नाव से लेकर उनके लिए स्टोरेज तक का, उनके लिए स्टोरेज का भी कि आलू सड़ जाता है लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, कोल्ड स्टोरेज भी हो, तमाम और चीजें हो। और बिजली विद्युत विभाग के पास में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का एक उपक्रम बने और बिजली का उत्पादन बढ़ सके, और इन सब के साथ साथ सड़कें ऐसी बने। आदरणीय नितिन गडकरी जी का विभाग तो प्रयोगों के लिए जाना जाता है, थाईलैंड सिंगापुर की सड़कें अगर बन सकती हैं तो भारतवर्ष के अंडमान निकोबार की उससे क्यों अच्छी नहीं बन सकती, बनेंगी, उसका भी संकल्प लेंगे। और इन सारी चीजों को मिलाकर मैं कहूंगा कि इन सारी उन्नति का मार्ग है वो आज का हमारी शपथ। हमने शपथ स्वच्छता के लिए है, स्वच्छता शहर की, स्वच्छता मन और मस्तिष्क की। हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, दुर्भावना नहीं रखेंगे, दुष्प्रचार नहीं करेंगे, अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे और विश्वास करेंगे अपने शासन पर, अपने सत्ता पर। और मैंने कहा है, सभी दलों के लिए कहा है कि आपके द्वार खुले हैं, द्वार सकारात्मक चर्चा के लिए है, नकारात्मक चर्चा से स्वयं भी बचिए और मुझे भी बचाइए। मुझे एक ही चर्चा चाहिए, स्वस्थ चर्चा और एक समग्र विकास, तेजी के साथ किया गया विकास। तो मैं समझूंगा कि आज ये स्वच्छता के कार्यक्रम में मैं नहीं आया हूं बल्कि स्वच्छता का संकल्प लेने के साथ मैं अपने कार्यों के अभियान पर आया हूं। मुझे समय समय पर उन तमाम माननीय मंत्रीगणों के पास समय लेकर जाना होगा। इसको ये मत मान लीजिएगा कि कभी मैं चला गया तो देखो ये तो भाग गया, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं जमने वाला हूँ। और मैं कहूँगा कि मैं आकर आह्लादित हूँ इस अंडमान की पवित्र भूमि पर, यहाँ के स्वातंत्र्य वीरों को जब मैंने सेलुलर जेल में देखा है तो कहते ना कि किस प्रकार से आज़ादी मिलाई है दिलाई है उन्होंने हमको, किस प्रकार से कैद खाने में रहते थे, किस तरह वो संकटों को झेलते हुए इस देश को आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं। ये पुण्य भूमि है, ये तीर्थ स्थल है, शहीदों का तीर्थ स्थल है, इसलिए सभी धर्मों को, मैं मंदिर को, मैं गिरजाघर को, मैं गुरुद्वारे को, मैं मस्जिद को, सभी को प्रलंब भाव से, संकल्पित भाव से कहता हूँ कि अंडमान श्रेष्ठ बनेगा। जब हम बोलते हैं कि श्रेष्ठ भारत और हमारा श्रेष्ठ अंडमान, तो मैं यही कहूँगा कि इतनी अच्छी यहाँ के लोग हैं, इतने सरल लोग हैं, उन सब के माध्यम से मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। और मैं कहूँगा कि हमारे अधिकारीगण भी एक सकारात्मक भूमिका में काम करने के लिए कृत संकल्पित है, और उनको भी मैं कहूँगा कि आप एक अभियान बनाकर चलो। लोग जब नए नए बनते हैं तो उत्साह में आते हैं, और थोड़े दिन के बाद उनका उत्साह कम होने लगता है। मेरे साथ उल्टा होता है, मैं आता हूँ तो पहले समझता हूँ, और समझने के बाद मैं विचारधारा बनाता हूँ, और विचारधारा बनाने के बाद मैं केवल समस्या नहीं सुनता, समस्या का समाधान भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। कल तमाम सामाजिक संगठनों से मैं मिला हूँ और उनकी बातों को मैंने देखा है, सारी समस्याओं को मैं लिपिबद्ध करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और उन सब के पास जाऊँगा। और आज मैं सबके माध्यम से, समाचार पत्र है उनके माध्यम से भी, मैं ये संकल्प को दोहराता हूँ कि श्रेष्ठ अंडमान, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का अंडमान हमारी संकल्पना को पूरा कर सके, यही आह्वान है। और मैं पुनः भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, तो इस स्वच्छता संकल्प के साथ, स्वच्छता शपथ के साथ, मैं उनको भी इस जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ।
1: इसके बाद माननीय उपराज्यपाल ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों को लेकर जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात माननीय उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा, सांसद विष्णुपद राय, मुख्य सचिव और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए परिसर में श्रमदान और सफाई अभियान चलाया। सभी गणमान्य अतिथियों ने स्वच्छता में जन भागीदारी का संदेश देते हुए स्वयं सफाई गतिविधियों में हिस्सा लिया।
2: भारत माता की
3: जय,
2: भारत माता की
3: जय,
2: भारत माता की
3: जय,
2: जय हिंद
3: जय हिंद।
1: इसके बाद माननीय उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस अवसर की स्मृति में फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10:21 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में भारी वर्षा तथा कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने व बिजली गिरने की संभावना है। वहीं मछुआरों को चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। इसीलिए मछुआरों को 20 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में भारी वर्षा और कुछ स्थानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 10:30 हुए 30 मिनट होने को है। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि FM 100.9 MHz पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 27वीं तिथि तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:28:40 हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।